मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर एवं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह का छठवां दिन, तदनुसार 23 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जा रहे हैं। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। प्रस्तुत है आज का चिंतन। स्वीकार्यता जीवन में बहुत आवश्यक है, फिर चाहे वह कोई सम विषम परिस्थिति हो, समस्या हो या हमारा स्वास्थ्य, तभी समाधान और निराकरण तक पहुंचा जा सकता है। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

परम शक्ति के चरणों में पावन वंदन से दिन की शुरुआत करने के उपरांत हम सदैव स्मरण करते हैं, भजते हैं कि परमात्मा हमसे नेकी करवाएं, हमसे अच्छे कर्म करवाएं, अच्छी वाणी बुलवाएं, और उन सब के लिए हमें चाहिए होती है बल, बुद्धि, विद्या, और इन सभी का समावेश आज शनिवार का दिन है। सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा के रूप में।

सभी दैवीय शक्तियाँ कर्म करने की नसीहत देती हैं, प्रेरणा देती हैं। जब मनुष्य कर्म को चुनता है तो धर्म को स्वतः ही चुन लेता है।

परमात्मा को खुश रखने के लिए सबसे आवश्यक है अपने भीतर के अंतर मन को, जो हमारे भीतर परमात्मा का अंश है, उसे सुकून में रखना। और वो अच्छे कर्मों से, निष्काम कर्म से ही सुकून में आता है। सुनते हैं आज के लिए ये अंतिम भजन।

परम शक्ति आप सभी के जीवन में गुलाबी रोशनियां सदैव विद्यमान रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवें। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी

सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे पशुधन का लू से बचाओ इसके बारे में। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि भाई जो हमारा पशुधन है उसको अपने लू से बचाना है, क्योंकि लू से नहीं हम बचा पाए तो फिर जो पशु है उसको कई तरह की दिक्कत हो जाएंगी। उसमें देखो सबसे जो ज़रूरी बात है वो तो ये है कि भाई जो हम पशु को पानी दें पीने का, वो कम से कम भी 4 या 5 बार तो ज़रूर कोशिश करें भाई पशु के आगे हम पानी रखें। और यदि मान लो पशु को जैसे खेड़ अपने बना रखी है तो उसमें भी ताज़ा पानी निकाल कर लें, और कम से कम 5-4 बार तो पशु को ज़रूर अपना पानी पिलाना है, इस बात का ध्यान देना है। और इसमें देखो लू से बचाने के लिए थोड़ा हा हम पानी में नमक भी मिला सके हैं, थोड़ा हा गुड़ मिला सके हैं, थोड़ा बहुत ग्लूकोज है वो भी हम उसमें दे सके हैं। बाकी इसमें जो बात आ जाए भाइयों चारे की, क्योंकि चारा एक अपना विशेष स्थान रखे है और वो पशु को हमने देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पशु का पेट नहीं भरेगा जब तक उससे हम कोई उत्पादन है उसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जो हम पशु को चारा दें वो सुबह और शाम दें, ठंडा मौसम जब बोले उस समय पर दें, और जो दोपहर में है वो कम से कम देने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हम दोपहर में देंगे तो उसमें गर्मी ज़्यादा है और पशु को दिक्कत बनी रहेगी। बाकी देखो इसमें जो रहने की जो हमारी व्यवस्था है, जिस जगह पर ठान है जहाँ पर हम बांधे हैं वो अच्छा होना चाहिए, जो छत है या छांव है वो पशु के ऊपर ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे पक्के शेड कई भाई बना दे हैं या छप्पर बना दे हैं, तो एक तो देखो कोशिश ये करें कि भाई जो पेड़ों की मान लो छाया हो उसके नीचे हम छप्पर बनावें, क्योंकि ऊपर से जो छप्पर है उसकी जो छत है उसका वो गर्म नहीं होगा। और ये हम क्या करें भाई टीन लगा दें हैं, टीन लगाने से वह बहुत ज़्यादा गर्मी है वो पशु को नीचा आवे है, फिर ऊपर से पंखा चला दें हैं तो जो पंखा जो हवा खींचे है वो ऊपर की गर्मी ने भी पशुओं के मारा है। इसलिए हम ध्यान करें कि भाई जो ऊपर हमने टीन बिछा रखी है या किसी भी चीज़ का छप्पर बना रखा है तो उसके ऊपर थोड़ा पराड़ परूड़ या और कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे वो चीज़ वो छत है वो गर्म ना हुए। बाकी जहाँ तक संभव उसके जो हवा का प्रबंधन है वो ज़रूर होना चाहिए। हवा के लिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है भाइयों कि एक जो सीधी हवा है वह तो अपने पशु का नहीं लगने देनी, क्योंकि तो वह तो होगी लू। और एक ये कहूँ भाई बिल्कुल भी ना लग गए तो वो इसमें क्या है कि जो मान लो हमारी हमारी जो छत है वो थोड़ा हा यदि ऊपर है तो उसमें जो हमारा प्रबंधन है उसमें रोशनदान का है या खिड़की का है तो वो ज़रूर होना चाहिए, कूलर या पंखा है उसकी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। एक जो पशु का बाड़ा है उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत जो पानी का छिड़काव है वो ज़रूर कर दें, उससे भी जो तापमान है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और जिस जो हमारे पशु हैं उनको गर्मी में बड़ा फ़र्क रहेगा। एक पशु की जो साफ़ सफाई है वो रखना बहुत ज़रूरी है, स्नान करवाना जैसे हम बात करें जो ज़्यादातर भैंस हैं वो तो भाई तालाब में राजी रहे हैं, बाकी कोशिश करें भाई सुबह और शाम जो ठंडा पानी है उससे पशुओं को नहलाएं। और मान लो जो भैंस है और वो पानी में बैठ कर आवे है वहाँ ना आवे है तो वो तो एक बहुत अच्छी बढ़िया बात है। बाकी देखो जहाँ तक एक और भी बात आ जाए, जो कुछ हमारे पशुपालक भाई हैं पशु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएँ तो वो सुबह शाम ले जाएँ, दिन के समय में ना ले जाएँ, क्योंकि उस समय ले जाने में पशु को बहुत जो तेज़ गर्म हवा है वो लगेगी और वो उसने सेज जाएगी और फिर नुकसान हो जाएगा। और मान लो किसी बार ये दिख जाए कि वह पशु को लू लग गई है तो उसका जैसे लक्षण उसके बता दें भाई कुछ तेज़ बुखार हो जाए, लार गिरनी शुरू हो जाए, आफना शुरू हो जाए तो उस पशु को तुरंत किसी ठंडी जगह पर ले जाकर हवादार जगह पर ले जाकर उसको आराम करने के लिए छोड़ दें और पशु के ऊपर जो ठंडा पानी है उसका धीरे धीरे छिड़काव करते रहें, या फिर जो पानी है वो थोड़ा बहुत गड्ढे में भर कर और कोशिश ये करें कि वह पशु जो है ठंडा रहे। इन कुछ बातों का ध्यान करेंगे तो जो हमारा पशुधन है वो जो ये लू हैं उनसे बच पाओगा और दूध देने वाला पशु ठीक ठाक दूध भी देगा, काम करने वाला ठीक ठाक काम भी करेगा। देखो भाइयों कई दिन हो गए लू बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए हमने अपना भी प्रबंधन करना है और अपने जो पशुधन है उसका भी प्रबंधन करना है। और विशेषकर बात आ जाए जो भेड़ हैं उनकी, तो इस समय में आके जो उनकी जो ऊन है उसको उतरवा दें ताकि वो उनको गर्मी ना करे। भाइयों, इन कुछ बातों का हम ध्यान करेंगे तो अपना जो पशुधन को ठीक रख पाओगे। हम सबका दिन मंगलमय हो।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि की बातें, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबन्ध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
3: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमे विभागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थिति भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं सप्तविंशति डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रसारित किया जाएगा प्रातः 7:30 पर। सवेरे 9 कार्यक्रम सबरस फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर। रात 7:45 पर फिल्म संगीत। तदोपरांत 8:25 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। एक फिल्म से कार्यक्रम देर रात 9:15 पर। फिल्मी गीतों के ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे आज आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार में रोजगार समाचार विशेषांक और साथ ही बातचीत होगी मातृभाषा संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

दोपहर 12:30 पर हरियाणवी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे पसंद अपनी पर अपनी। कार्यक्रम लोक संगीत जिसमें आज कलाकार होंगे सूरज भान गंगानिया और पार्टी प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में बातचीत कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे करें इस विषय पर। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आज बातचीत का विषय रहेगा अंगूर के बागों की देखभाल और वार्ता रहेगी केंचुआ खाद बनाने का तरीका और उपयोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार में कार्यक्रम आपकी पसंद और पशु पक्षियों की देखभाल के बारे में उचित जानकारी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अमृतपाल सिंह। सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार अमृतपाल सिंह, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। वैश्विक अस्थिरताओं के चलते आज हम चर्चा करेंगे कि जब दिमाग पर दबाव महसूस हो रहा हो कि क्या करें और क्या ना करें, उस समय जीवन में संतुलन कैसे आए, क्या निर्णय लें, ऐसी ही चर्चाओं पर आधारित आज का ये अंक रहेगा कार्यक्रम की शुरुआत में। लेकिन पहले सुन लेते हैं ये सकारात्मक गीत।

आज का दौर ऐसा है कि पूरी दुनिया वैश्विक अस्थिरताओं के दौर से गुजर रही है। ऐसे में अपने घर का दिया कैसे रोशन रख सकते हैं कि हमें मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का दबाव छू तो सके लेकिन नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर सके, क्योंकि जागरूकता भी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो हम जब भारतीय हैं तो भारतीयों की जीवन शैली प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। हम सभी के आसपास वो सभी पहलू मौजूद हैं कि हमें अन्न कैसे उपजाना है, हमें सब्जियां कैसे लेनी हैं, प्रकृति से हमें खाने के लिए जो भी उत्पाद हैं वो चाहिए। दैनिक जीवन में हमें जिन भी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सामान हम खुद से अपने भारत में, अपने आसपास की सोसाइटी में बनाने के लिए और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उस ढांचे में उकेरने के लिए सक्षम हैं। तो हमें अपने कौशल को निखार कर अपना जो उस कुशलता से, उस व्यवहार से जो पहले के समय में शैली थी, जीवन शैली जो वैज्ञानिक जीवन शैली थी, उस पर आधारित रहना होगा। यदि हम प्रकृति से कट जाएंगे तो इस धरती पर कोई भी आपदा आएगी तो सर्वप्रथम हमें ही मारक दशा देगी, क्योंकि जब हम प्रकृति से कुछ भी लेते हैं, चाहे वो हम भोजन की

करें, वो हम छत की बात करें या वो हम एक अच्छी हवा की बात करें, तो इस जीवन को चलायमान रखने के लिए सही मायने में कुछ आवश्यक है, तो वो सब कुछ हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। केवल और केवल हमें उसे संजोने की आवश्यकता है और सही तरीके से अपने आसपास भरपूर मात्रा में समृद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपनी ज़रूरत के अनुसार किचन गार्डनिंग, सभी के पास थोड़ा ही सही स्थान ज़रूर है, आप उसमें दैनिक रोज़मर्रा के जो किचन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, या छोटी छोटी सब्जियां हैं, टमाटर है, हरी मिर्च है, जिन्हें गमले में भी उगाया जा सकता है, बेल है, इस तरीके की चीज़ें आप उगा सकते हैं। यदि आप अपने आपके आसपास घर में इतनी जगह नहीं है, तो अपने आसपास के किसी भी गांव में जाकर जो खेती बाड़ी करते हैं उनसे संपर्क कर कोई छोटा सा समूह बना सकते हैं और उस समूह में इन गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जब मनुष्य अच्छा खाना लेता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन और वैसा ही होए तन, तो जब हम अच्छा खाना लेते हैं, अपने शरीर का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, तो हमें निश्चित रूप से एक अच्छी सेहत इनाम में मिल जाती है। तो कर्म करने से शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन कर्म करने के लिए हमारा तरीका, हमारा समय सही होना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना से पहले या इन वैश्विक आपदाओं से पहले जीवन एक समान चल रहा था, तो बहुत से ऐसे हमारे साथी जो श्रोता होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या हो जाए कि फिर से वही जीवन लौट आए। फिर से पूर्णतया वैसा होना संभव नहीं है, तो हमें स्वीकार्यता देनी होगी कि हाँ, जो कुछ बदल चुका है, इस बदले हुए परिवेश में पैसा कमाने के, आजीविका कमाने के मायने भी बदल चुके हैं, तो उन सभी मायनों के अनुरूप आज हमारे पास कौन सी डिग्री है, कौन सा कौशल है, और यदि नहीं है तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। जब हम AI की इस दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, जब हम ये सोचेंगे कि आज से 5 साल बाद किस चीज़ की मांग होने वाली है, तभी आज काम कर पाएंगे और 5 साल बाद, 10 साल बाद शांति से जीवन जी पाएंगे। यदि आज ये सोचेंगे कि काम चल तो रहा है, तो फिर काम चलेगा और 5 साल बाद केवल रेंगेगा, उसमें आप जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए आज को स्वीकार्यता तो देनी ही होगी, और आजीविका के साथ साथ हम सभी कुछ ना कुछ बचत भी करते हैं। आजकल हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे ऐसे माध्यमों से छद्म भेष में कुछ ना कुछ अफवाहें, किसी ना किसी तरीके की चेतावनियां जो कि डरावनी होती हैं, उन्हें सुनते रहते हैं। उन पर ध्यान न देकर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। आपके पास जो कुछ है, जैसे भी है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए जब आपने आज तक उस पर भरोसा रखा है, उस बचत की आपकी शैली ने आपको हमेशा कोई ना कोई फ़ायदा ही दिया है, नुकसान नहीं दिया है, तो उस रास्ते को पकड़ते रहिए। लेकिन साथ ही भारत सरकार की, अपनी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, साथ ही जो भी वेबसाइट्स मिनिस्ट्रीज़ की हैं, उन पर विज़िट कीजिए, देखिए कि आज की मांग क्या है और सरकार की जो नीतियां हैं वो हमसे क्या चाहती हैं, कि हम अपने कौशल से समाज में कौन सा काम आरंभ करें, किस योजना से जुड़कर सरकार की वित्तीय सहायताओं का लाभ लेकर हम आज भी एक नया कदम उठा सकते हैं, नई जीवन शैली को आरंभ कर सकते हैं, और उसके लिए प्रक्रियाएं क्या हैं। जैसे GST में भी समयानुसार सुधार आते रहते हैं, तो उसके अनुसार यदि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो उन संशोधनों को आपको समय अनुसार स्वीकार्यता देनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि 2017 में जो GST के नियम थे वही आज भी हों, तो उन्हीं के अनुरूप नहीं चलना, अपडेट भी करना है। तो आज की जो पीढ़ी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, इस बदलते युग में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि 5 से 10 साल बाद, जब आज AI का युग है, 20 साल बाद रोबोट युग भी आएगा, तो उन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो जीवन है आने वाले 50 सालों में समृद्ध रूप से चले, उसके लिए आज हमें क्या सीखने की आवश्यकता है, और क्या सीखने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि पुराना छोड़ना भी नहीं है, अपनी विरासत को सहेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। बातचीत को जारी रखेंगे, सुन लेते हैं ये गीत।

0: कहे तो फिर उसके बाद।
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये शब्द तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

हमें भी अपने जीवन का एक तारा कुशलता से बजाना है, कौशल से बजाना है। ये देश केवल सांसदों से नहीं बनता, ये देश प्रत्येक नागरिक से बनता है। भारत हम सब की जिम्मेदारी है और भारत की विरासत भी। जो कुछ हमें मिला है उसको संजोने के साथ साथ संवारने की भी जिम्मेदारी है, और संवारा कैसे जाएगा, आज की पीढ़ी तकनीकी पीढ़ी है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी हमारी पीछे वाली पीढ़ियों ने हमें दिया है उसे तकनीक के साथ कैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी से, वर्चुअल रियलिटी से संजो सकते हैं, ताकि भारत का दिवला यूं ही जलता रहे, जगमगाता रहे और तिरंगे का मान बढ़ता रहे। इन शब्दों के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत कि हमें एक साथ कैसे आगे बढ़ना है। एक अकेला इंसान सपना देखता है, लेकिन समाज और भारत और राष्ट्र उस सपने को विश्वव्यापी क्षितिज तक पहुंचाता है, लेकिन पहला कदम अकेले ही बढ़ाना होता है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुबह सवेरे, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली की
1: सुनिए। क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जानची पर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए

0: लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
7: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
6: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honour of a Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
8: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी
6: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
9: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
6: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
10: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
6: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
11: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
12: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी. इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक-एक करके हो गई बात. और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी.
6: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99.51 rupees per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92.49 rupees per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red color warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange color warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
13: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
6: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night. Chasing a massive target of 256 runs, set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
14: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. Six-Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
6: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत. कलाकार हैं सूरज भानगंगानिया और उनके साथी.

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार हैं सूरज भान गंगानिया और साथी।
4: सुधारण खातर युद्धान जगत पर

Du Mama, what am I? Perlier. Du Mama, what am I? Perlier. No,

0: चोट भी से ना उठी ची से,
1: चोट भी से ना उठी ची से,
0: जगदीश चंद्र दुख जल्या रे नहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। कार्यक्रम में पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं पैडमैन फिल्म से, आवाज़ अरिजीत सिंह, गीतकार हैं कौसर मुनीर। सुनते हैं गीत फिल्म पैडमैन से।

अभी आपने सुना गीत फिल्म पैडमैन से। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे संजू फिल्म से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की।

अभी आपने सुना गीत अलका याग्निक की मधुर आवाज़ में राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। अगला गीत आप सुनेंगे धड़कन फिल्म से, आवाज़ नुसरत फ़तेह अली खान और साथी गीतकार हैं समीर।

अभी आप सुन रहे थे गीत धड़कन फिल्म से, आवाज़ नुसरत फ़तेह अली खान की। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आवाज़ है पमेला चोपड़ा और मनप्रीत कौर की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गीत धर्मवीर फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी और मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, गीतकार संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने सुना गीत धर्मवीर फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से। सबरस कार्यक्रम में आज हम सभी जीवन के रस शामिल कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये गीत कभी खुशी कभी गम फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना गीत कभी खुशी कभी गम फिल्म से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ कुछ होता है फिल्म से। आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर, संगीत दिया जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना गीत कुछ कुछ होता है फिल्म से, आवाज़ थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। कार्यक्रम सबरस आज आपने सुना डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। समय सीमा को देखते हुए ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Neena Rakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at Kolkata Airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said Secretary Rubio will travel to New Delhi later in the day and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. CBSE said the decision was taken after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 paise 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates after a 3 rupees per litre hike on the 15th of this month, followed by a 90 paise increase on the 19th. Overall, prices have risen by nearly 5 rupees per litre in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Indian Army officer Major Abhilash Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. Major Barak is currently serving with Indian Battalion as commander of the Female Engagement Team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. In IPL cricket, today Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:10 हुए हैं। अब हमारे आज के पहली सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर, न्यूज ऑन AIR और DTH पर कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। दोपहर 12:30 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ सोनी आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों भाई अनिल भाई की राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस उपदेशक भजन के साथ में, जिसके गायक कलाकार भी राकेश कुमार बामणिया। फरमाइश भेजी आप सबने। चौधरीवाद से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक प्रयाग, प्रियांशी मटोर कैथल से रामदिया, नीलम्बोत, अजय, विजय, तमन्ना बड़ौदा से उधम मौर, साथ में भाई मोहित मामन सिंह मौर और लोक को कॉलोनी लोहारू से आप हैं बिलू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी देवी। गांव बागोत से आप हैं महेंद्रगढ़ का गांव, प्रकाश संभावता, सुबेदार खेमचंद, जयदयाल, ओम प्रकाश, बलबीर, वेद सिंह, नंद किशोर। और इसी उपदेशक भजन की फरमाइश भेजी है गाँव पांडू पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वाणिका गिल। आप सब की फरमाइश गायक कलाकार राकेश कुमार बामणिया।

तो विरागनी सुनी मतलब बैनर हो के खाक समान जिनमें मैं का वास भरेगा एक कलाकार थे राकेश बामनिया और भयो अगली रागनी रहेगी कलाकार रहेंगे भाई महावीर चोपड़ा और उनके साथ ही फिर मैच भेजिए आप सब ने अड़ेवा जीन तय आप हैं भाई नरेश लोहान राजकुमार लोहान जोगेंद्र लोहान रणदीप कश्यप सतवीर पांचाल और पूरा परिवार नंदगढ़ जींद से आप हैं मोहनलाल दलाल संजय दलाल राजेश रोहित दीपांशु पूरा परिवार दोरड से श्री राम चहल वीर सिंह चहल दया किशन और साथ में ओम प्रकाश द्रोली खेड़ा से दिलबाग शोकंद और साथ में आवा सिंह ग्यासरी उर्फ गादी उत्तर प्रदेश से आप हैं काशी राम दलाल साथ में बलदेव आर्य रामपाल दयानंद धर्मवीर नितिन अर्पित हरिओम बुटाना से महावीर शर्मा भरत शर्मा सुरेश और लोदेसर से आप हैं पप्पू रामगाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका देवी साक्षी रुचिका देवी माधवान पन्ना जोजू कला से विनोद कुमार प्रजापत अंकित प्रिया तनिषा दीपक अनिल और छोनू और इसी रागनी की फरमाइश भेजी है भाई झज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा मयंक रजत भाटिया ने कस्बा जुलाना से पंडित महावीर शास्त्री और आप हैं आदर्श गाँव कलंगा से मास्टर सुंदरपाल कौशिक संतरा देवी अभिनव निशान दृष्टि तोसानी हिमानी आप सब की फरमाइश पे रागनी गायक कलाकार महावीर चोपड़ा और उनके साथी

रतन परी में जाए पछयो भारी क्लेश होया से।

Huh?

थारे पाप का कमती, पाप का कमती तोल रहे और धर्म का सौदा बद जागा। पवन पत्ती से गवाह में रहो सभी मुकदमा रद्द जागा। जब तू है गिचोंद थारी जब बखत आ

0: अगली रागनी गायक कलाकार रंगवीर कमल सिंह और उनके साथी फरमाइश भेजी आप सब ने। गांव सागवान हरियाणा से आप हैं शमशेर गुजर, पालाराम गुजर, सुमन रानी, रवि कुमार, पवन, बलजीत और पूरा परिवार। आप हैं जिला रोहतक गांव चुलाना से मास्टर रामचंद्र रोहज, रामफल, सुरजा, हेमचंद, रोज और पूरा परिवार। इसी रागनी की फरमाइश भेजिए गाँव लाठ जिला सोनीपत से केशव, नमन, अनवी, अवि कपूर सिंह कौशिक ने। गांव चौटाला से दारा पंडित, संजय शर्मा, दीवानसु जोशी, बुलबुल जोशी, पुनीत पंचारिया, मसीता डबवाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत। और आप हैं डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश शिवानीवाल, सौरभ शिवानीवाल, रमेश वर्मा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गाँव द्वारका से आप हैं शमशेर सिंह और पूरा परिवार। आप सब की फरमाइश फिर अग्नि गायक कलाकार कमल सिंह और उनके साथी।
1: इतनी बात होने के बाद वहां पांचु पांडु भी आ जाते हैं। ये महाराज कृष्ण भगवान हम जश्न मनाएंगे, लड़ाई में जीते, तो कृष्ण भगवान पांडवों को समझाता है, क्या कहता है?

0: आप मिल जा कदे हस्तिनापुर में तोड़ो ताने।
1: और वही कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति गायक कलाकार रंग भी लीला रानी और उनके साथ थे फरमाइश भेजी आप सब ने। आप हैं गांव पांडवान जिला दादरी से लतीफ खान और बलजीत सांगवान, प्रदीप सांगवान और राजवीर ओम प्रकाश। इसी रागनी की फरमाइश भेजी है जिला जींद गांव राम राय से गंगा सिंह प्रधान, उषा रानी, विक्रम सिंह, परविंदर, विजेंद्र सिंह, पूजा, रिंकी, पूरा परिवार। आप हैं बिरौली जींद से सुरेंद्र सांगवान, अंकित, सचिन, पावनी, मोहित, करमपाल। और इसे रागने की फरमाइश भेजी है गांव बाणा ब्रह्मणा नरवाणा से मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विजय, जितेंद्र, अजय और जोगिंदर ने। और राम और करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दादरगेट विवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। और आप हैं अली मोहम्मद सिरसा से श्रोता हैं भैया अंजना, बुलबुल, मैनपाल, चिंटू स्वामी, सुभाष लूना, अमन, एकता कलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, साथ में है बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। तो वही आप सब की फरमाइश पर अग्नि गायक कलाकार हैं लीला रानी और उनके साथी।

0: तो भैया आपने रागनी सुनी, कलाकार थे भी लीला रानी वरुण के साथ ही, और विषय के साथ आज का पसंद अपने अपने कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल बाइंदो इजाजत सारे बण भैया ने, राम राम।
1: आपने सुना लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, DTH और न्यूज होने आईआर पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
3: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है, और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है, और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी

की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा,
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद सहित देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाएगी। इस उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हरियाणा के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं तथा एकीकृत ईवी एवं ऑटोमोटिव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट से संबंधित केस प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसमें हरियाणा में संभावित निवेश एवं विनिर्माण अवसरों को रेखांकित किया गया। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विनफास्ट कंपनी की कार को चलाकर भी देखा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत और सरकार के बीच मजबूत समन्वय से हरियाणा आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पहचान स्थापित करेगा। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कल पंचकुला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रुति चौधरी ने बच्चों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्धि करवाई जा रही सुविधाओं, खानपान और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पाया कि मुख्यालय स्तर की वरिष्ठ महिला अधिकारी भी नियमित निरीक्षण के लिए केंद्रों में नहीं पहुंच रही हैं। इस दौरान श्रुति चौधरी ने लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण लेने के आदेश जारी किए। चंडीगढ़ प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक नीतीश सिंगला ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा भीषण गर्मी के दौरान भी स्कूल खुले रखने का सख्त नोटिस लिया है। श्री सिंगला ने कहा कि ऐसे सभी स्कूल आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। आवश्यकतानुसार स्कूल 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की केवल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रख सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों की किसी भी माध्यम से कक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें पूरी तरह छुट्टी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आज से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जींद नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू सिंगला ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि अस्पताल में एडवाइजरी के अनुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्मी में बाहर न निकलने की सलाह दी।

0: आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी यही सलाह है कि वो बहुत ज्यादा जरूरत हो इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी ही हॉस्पिटल में आए, बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी लू लगने से उस पेशेंट को उल्टी दस्त लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है।
1: इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्मी गाने।

लहू के दो रंग। इस फिल्म का गीत आपने बारी बारी से दो आवाज़ों में सुना, पहले सुना यसुदास का गाया हुआ और उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़ में। फारूक कैसर के बोल थे, बप्पी लाहिड़ी का संगीत था। ऐसा ही एक और गीत दस्तक फिल्म से आपको सुनवाते हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, संगीतकार मदन मोहन की आवाज़ में गाया हुआ।

दस्तक फिल्म का गीत आपने पहले मदन मोहन की आवाज़ में और फिर लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत पद किया था मदन मोहन ने। आज के इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है जिन फिल्मों में मेल और फीमेल यानी महिला स्वर में और पुरुष स्वर में गीत गाए हुए हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। इसी क्रम में अब लव इन टोक्यो फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। पहले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुनेंगे, इसके बाद लता मंगेशकर का गाया गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

ये था लव इन टोक्यो फिल्म का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी का गीत। आवाज़ें आपने सुनी पहले मोहम्मद रफ़ी की, उसके बाद लता मंगेशकर की। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का, आपके मार्गदर्शन का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में हार्दिक स्वागत है। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक श्रोता मंच कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे, तो आपको ज़रूर सुनना है ये कार्यक्रम। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जिन श्रोताओं ने अभी अभी हमारे इस कार्यक्रम को सुनना शुरू किया है उनको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो मेल वॉइस में यानी पुरुष स्वर में और महिला स्वर में बराबर हिट हुए और बराबर सुनना अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पुरुष स्वर में गीत सुन लेते हैं और मन होता है कि महिला स्वर में भी ये गीत कभी सुना जाए, तो आज के इस कार्यक्रम में हम ये जोड़े लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसी तरह से चिराग फिल्म का गीत आपके लिए प्रस्तुत है। मजनू सुल्तानपुरी का गीत है, संगीत है मदन मोहन का। पहले आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़।

ये आपने सुना चिराग फिल्म का गीत, पहले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आपने सुनी, उसके बाद लता मंगेशकर की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शर्मीली फिल्म से, पहले किशोर कुमार की आवाज़ आप सुनेंगे, इसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़।

ये था शर्मीली फिल्म का गीत, पहले किशोर कुमार और उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। कवि नीरज के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना पगला कहीं का फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। पहली आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, इसके बाद आप सुनेंगे लता मंगेशकर को। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गाना, पगला कहीं का फिल्म का नाम था। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का, और ये गीत आपने सुना पहले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में यूं तो बहुत से ऐसे गीत हैं जो अलग अलग पुरुष और महिला स्वर में गाए गए हैं। हमारी ओर से ये छोटी सी कोशिश थी बस। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
1: Work is currently underway for approximately 160,000 recruitments. You must be aware that previously, recruitment used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
2: Annual calendar ki vyavastha.
0: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
3: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर्स क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स India is preparing our young people to provide leadership in that area.
0: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, L. Murugan, has said that the government is committed to realizing the vision of Vikasit Bharat by 2047. Addressing the Rozgar Mela at ICF Chennai, he said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is witnessing rapid growth in infrastructure, digitization, employment opportunities and ease of doing business. Dr. Murugan said that the centre has so far provided 12 lakh jobs, fulfilling the assurance given by the Prime Minister. He said the government's success is driven by the mantra of reform, perform and transform. He urged the citizens to stay informed about various welfare schemes and programs of the government. We spoke to some of the beneficiaries who were given appointment letters at today's Rozgar Mela.
4: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh. And I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
5: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work, but a service to the nation.
6: My name is Tajinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Bihar government has announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organisations to help arrange drinking water and sattu, a flour made from dry roasted pulses and cereals, for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the Children's Home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprasth Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
7: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
7: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
7: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
2: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
8: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
2: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
2: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
10: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
2: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
11: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाई अनुभव अनिल भाई के राम राम। मौसम की बात करा तो मौसम की जो मौसम विज्ञान विभाग है अपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का थोड़ा सा भाई अपना कल रात से बदलाव में बता रखा था और उसका जो आंशिक प्रभाव है सवेर में कितने हल्की फुल्की चादर बे भी कह सकें थोड़ी गाट भी कह सकें बूंदाबांदी आई। बाकी तापमान चौपाल तो बाहर की बात करा खूब अच्छी ठाडी गर्मी कह सकें हैं और भाई कुआ थोड़ा सा खाखड़ सा भी हो जाए है उसके भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जा। बाकी देखो इस मौसम में कोई नहीं बेरा होता किस टाइम आंधी आ जा किस टाइम भाई बको बम्बूड़िया आ जा किस टाइम को रेला आ जा तो बड़ा सावधानी का मौसम है। और पहले की बात करें तो भाई देखो पहले ऐजे होया करते खूब क्योंकि भाई पानी की कमी होती जंगल में पानी नहीं था ना इतने कोई अपना कुएँ थे तो बहुत सारी सुविधा और तो भाई अपना आर ओ के पानी चल रहे हैं और बहुत सारा ऐसा हुआ। हालांकि जो भूमिगत जल स्तर है कितने नीचा है कितने ऊंचा है और जो पीने का जो पानी है जो अपने एक रेड डॉल होया कर दी बड़ी बाल्टी होया कर दी जे पदर के और अपना खूब भाई छिपके पेट भर जाना पानी पिया करते वो चीज़ वो पानी भाई जो स्वाद उसका और वो रहा नहीं और खूब रुक के पहले पाटा करते बोला भाई अगर पानी कमी होगी पानी कमी होगी लोगों ने सोची भी पानी कमी कर दो होगी खूब अपना कुई है कुएँ हैं फिर बरम्या मोचाल के बरम्या भाई ला दी खूब ट्यूबवेल अपना खूब भाई अपना इतने ऊँचा नीचे खूब उसकी भाई अंधाधुंध जो है भाई दुआई करी खिंचाई करी और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके भाई पानी की कमी तो कोनी हुई लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं रहा ना उसमें भाई अपने कपड़े खुद ना को चाय बने ना हमारा को पेट भरे पीएच मान उसका ज़्यादा हो गया बहुत सारे से कारण हो गए। और बाकी भी चलो मौसम की हम बात कर रहे थे तो भी मौसम का थोड़ा सा ऐसा है कि आंधी रेलवा भी आज का है उसका बूंदाबांदी भी थोड़ा जो आंशिक प्रभाव है पश्चिमी विक्षोभ का इतना सक्रिय तो नहीं है अगर थोड़ा बहुत हो जाए इस मौसम में तो थोड़ी सी भी गर्मी तो राहत भी मिल जाएगी। हालांकि भैया जो कपास की भाई बुआई का काम लगभग भैया का हो लिया कोई घनी पचेत सचेत में भी रह रहा है तो वो अपने जल्दी करके भाई अपने पूरी कर लेंगे और बाकी तो भाई कितने गोडे गोडे भी हो रही है कितने टाकने भी हो रही है कितने भाई अपना जामी भी है कितने थोड़ी सी जलन की भी समस्या तापमान ज़्यादा होने के कारण भाई कपास फसल में देखी गई है। तो बाकी तो कपास में ये है कि भाई अगर हम मोटा तौर पर देसी बात करा भाई दो अंगड़ तो नीचे ज़्यादा हम गड़ोदे हैं डूंगी बोते हैं तो फिर जो भी पेड़ा जामेगा धीरे धीरे जितना लेट जामेगा उतना ही जल्दी जड़ेगा एक तो ये बात। दूसरा जड़ भी ट्यूबवेलों के पानी लग रहे हैं खारे मीठे उड़े या समस्या है और भाई जड़ बिल्कुल भाई अपना अच्छा बढ़िया नहर का पानी लगा रखे है भैया ने और भाई धरती में कोई किसी रे कलर की चास नहीं है तो लगभग पाँच में छठे दिन बाड़ी ऊपर आ जाए है और जड़ भी जलन की समस्या है उड़ थोड़ा सा भाई ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपने भी मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए तो बादशाह भी अपने कितने बीज चबोए जा हम देखा भाई कितने कसर मसर रहेगी जिद्दी रहेगी। बाकी कपास में ये भी है कि बिट्टी कॉटन का पैरा है खूब अच्छा तीन साढ़े तीन फुट में भाई जो कूड़ से कूड़ का फासला है लेकिन बिट्टी कॉटन में ये देखेगा कि भाई अगर घनी गहरी हो जाए कुछ किस्में ऐसी भी हैं कुछ राशि की सी किस्में हैं भाई अगर घनी गहरी हो जाए तो फिर भी बुढ़वार ज़्यादा ले जाएँ कुछ अपना ऐसी है दिग्गज की है दूसरी किस्में थोड़ी सी भाई बोनी रह जाए हैं और उनमें थोड़ा सा बीज अगर दो पैकेट गे रखे तो कोई आंट को नहीं घनी यानी कि अपने व्यक्तिगत तौर पर भाई ये फैसला लें कि अगर घनी बढ़वार लेने वाली है कोई किस्म तो उसमें थोड़ी सी छिदा दें अगर घना उसकी ग्रोथ होगी फैलाव हो गया तो उस अवस्था में फिर समस्या हमारे साथ ये आओगी कि भाई ऊपर ऊपर उसका फल लगा टिंडे लगेंगे फूल लगेंगे बीच में गुआ का पहुँच जाएगा एक बार तो जी दुख पाओ हमारा थोड़ा सा भाई पेड़ा पाड़ दिया नहीं लेकिन वो हमारे फायदे खातर है। थोड़ा सा मोटा मोटी बात करा भाई एक हाथ एक फैसले पर तो कम से कम पौधा होना ही चाहिए ताकि उसने हवा भी मिले और उसने भी सूरज की धूप भी मिले जो भी हम खाद उर्वरक डालेंगे नुड़ाई गुड़ाई करेंगे पेड़ तो पेड़ का फासला ठीक है तो बीच में कसोला भी उसमें सही निकल जाए। और हम देखा भाई ईब जो भैया ने कपास लगा रखी है इसमें तो यह भी ठीक है अपना काम चल रहा है लेकिन बाद में

और भाई बाकी आज जो कर्म करेंगे जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनकी देखभाल के बारे में। मैं देखो कृषि यंत्र की बात आओ है, पहले की हम बात करा तो पहले तो अपना भाई आड़ काट के मारे होया करते और ना होंदा सुहागा मैज पाटा जिसने हम कह दिया करते, पैर में अपना भाई गिरडी होंगी और बाकी तो भाई कहा करते मूसल का मुँह की मीम के बीज है इस तरह के, बाकी उनमें डिमक की या कुछ जरकी फाड़ी में कात पचेला जो भी होग समस्या आ जा करती भाई, रेडू रेडू उंगने हैं और भाई अपना ये सब कुछ वागे तो संगी भाई अगर तो मुड़ जाती जेली जाली भी कई बार थोड़ी सी समस्या उसमें आ जाती। लेकिन आज जो हमारे कृषि यंत्र हैं भाई समय के साथ बदलाव में बहुत महंगे हमारे कृषि यंत्र हैं। छोटे छोटी हम बात करा कि भाई अपना बारीकी तो बात करा भाई अपना कस्सी तो हम बात करा, कई बार हम कहे भाई अपना मी में बूंद में ऊँ हम टेक दें बिना साफ करे, अगर लो की कस्सी है तो उसमें जंग की समस्या आ जाएगी और भैया अगर उसका ब्लेड लगवा रखा है तो कई बार के ऊपर लो है नीचे स्टील का ब्लेड है तो बीच में गड़ के पानी में हमने टेक दी तो फिर वो भाई अपना उसमें ब्लेड जगह छोड़ दे है। इसी तरह भी जो हमारे कसोले हैं कई बार हम अभी बाड़ी बूढ़ी नुड़ाई काम कराया और अपना खुड़ मंदिर दिया धर के भूल गए, ये भी एक मोटी समस्या हमारे दौर आ जाए, फिर वो उसमें बिडिम की समस्या आ जाए है जलन की समस्या आ जाए है। स्टील के हैं तो भी हमने साफ करके भाई सुरक्षित जगह पर रखने चाहिए क्योंकि भी बाड़ी अगर आड़नी है कई भाई भी बड़दा ताड़ा है कोई सा कृषि यंत्र है कस्सी है कसोला है हमने अगर भाई खेत में बाड़ी में कपास में दर रखा है तो उसमें फिर मर जान माल का नुकसान दोनों चीज़ का होने का मौका ज़्यादा रहे है। इसके अलावा फिर हम थोड़े से जो हमारे बड़े कृषि यंत्र हैं उनकी बात करा कि भाई अपने जो कल्टीवेटर है एरो है और इनमें भी ये हो कि भाई कोई फाड़ा टूट गया हमने या फिर हमने गौर हुआ है या कितने बार नुए छोड़ के धरती है जर की समस्या आ जाए स्प्रिंग है वंडिंग ले हो जाए हैं उनमें समस्या आ जाए फिर जो हमारी बिजाई मशीन है जिस तरह हमारा बिजाई का काम लगभग भाई जब पूरा हो जाए है तो हमने अपना भाई कितने ना कितने आस पास में पेड़ करनी चाहिए गौर व खड़ी कर दे हैं तो उनमें अंदर भी जो खाद रहेगी वह उसकी सुरागन खराब कर देगी गड़ा देगी जो उसका पात है नीचे का वो उसमें गड़ जाए है और फिर आगे भी बिजाई के लायक नहीं रहती। कोई भी सामने दिखे को नट नाट जिस तरह भी काम हो गया माटी का काम है सारा खेता में तो एक बार उसके काम होने के बाद में नट बोल्ट हैं वो बदल दें या फिर अपना जो भी क्रोसिन का तेल है मिट्टी का तेल है वो थोड़ा सा डीजल है पेट्रोल है वो थोड़ा सा ला के छोड़ दें ताकि उसका जंग है वो हट जाए। कोई भी सा कोई बैरिंग की आवाज़ है तो हम गर्रा किसी उसमें नहीं करें, अगर इसी समस्या कोई भी दिक्कत तो उसका समय पर हम समाधान करा लें। और फिर कई बार ये भी हो जाए अभी हमने छोड़ दी नहीं सोचा भी आगे जब काम पड़ेगा तब देखेंगे, जिस तरह हम ढींगे की बात करा ढींगा मोटी भाषा में भाई जो अपना कल्टीवेटर का एक रूप हो है और विशेषकर जो बाड़ी आड़न में काम आओ है बड़ा ऊंचा हो है जिससे जो कपास के पेड़ हैं वह तो रह जाए नीचे और भाई अच्छी डाल उसमें फिर टूटने की समस्या नहीं रहती बढ़िया बाड़ी उसमें अड़ाई का काम करते हैं या फिर कल्टीवेटर का भाई फाड़ा उतार के भाई बाड़ी आड़न का काम करें हैं तो उसमें थोड़ा सा जो नटा का एक सही सिस्टम है भाई कड़ा जचेगा पेड़ उसमें नहीं पटे एक शार सार लागे किसी भी साइड तो ऊंचा नीचा ना हो तो ये भी हमने इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। को एरो का कोई ताव का मुड़ रहा है कई बार पत्थर की जो हमारे खेत हैं जड़ थोड़ी सी तोड़ी बाठे की जड़ चास हो जाए है या फिर रोड़ा पर भी हम ले जाए वहाँ भाई अपने एरो ने तो उड़े भी दिक्कत आ जाए कि कई बार भाई तावे हैं वो चंड जाए हैं फिर उसके बाद में चंडे के बाद में फिर जो धरती जो एक पाड़न का काम है चीरन का काम है वो नहीं कर पाते तो उसके पीछे थोड़े पहिया का जो जुगाड़ है वो अपना बनवा ले ताकि जो एरो के तावे हमें सुरक्षित रह जाए। बात करा भी हम थ्रेसर की देखो भाई थ्रेसर का जितना भी हमारा काम था सरसों की कटाई का गेहूं का चने का सारा हमारा लगभग हो लिया सारा काम जो है कटाई का मेथी का सब हमने काट पीट के भी नक्की कर दिया और फिर हम क्या करें वो हो जाए कि भाई जब काम पड़ा है चीज़ राज की फिर हम ध्यान करें बाकी बेली जगह पर नुए छोड़ दें हैं तो भी थ्रेसर में जब भी गेहूँ जो हमारे निकले हैं सरसों निकली है चना निकला है मेथी निकली है और भी जो हमारी फसल थी तो उसमें बहुत सारा रेता कचरा और माटी उसमें फंस जाए है अच्छी डाल उन्हें साफ करके बढ़िया डाल और भाई अपना खूब हवा हुआ मार के अच्छी तरह से ठीक करके फिर उसने अपना हम ये करें कि भाई बढ़िया जगह पे खड़ी कर दें कोई भी उसका पट्टा है कोई चैन है ग्रीस वगैरह करा के हम उसने छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी मशीन की बात करा भाई कंबाइन मशीन है या फिर कंप्यूटराइज गोड़ी है, हालांकि कंबाइन मशीन का काम हमारा अलग के सारा पूरा इसमें हो लिया तो उसमें यह है कि अपना अच्छी डाल भाई सफाई करके हवा हुआ मरा के ग्रीस पानी करा के इसी जगह पे हम खड़ी करें जड़ा भाई मीते बच जा। कुछ हमारे कृषि यंत्र छोटे मोटे हैं

भाई जिस तरह से ज़रूरत नहीं है कल्टीवेटर की, बस तो उसने भाई अपना थोड़ा सा बाठे बूठे नीचे लगा के और कोई थोड़ी पक्की जगह पे खड़ी कर सके हैं, जब भी कोई पशु है, कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, इस तरह का कोई भी कोई जानवर है, कोई मानस है, वो उसके संपर्क में ना आवे। और बाकी भाई जो हमने जिक्र कराया कंप्यूटराइज गोड़ी का, उसका काम ही जोरों पे है धान की, जब तक भाई अपने बिजाई नहीं हो जाएगी, भाई यहाँ काम खूब उस पर जोरों पर रहेगा, तो उसका भी जो भाई कंप्यूटर का एक जो तालमेल है ट्रैक्टर का, मैं एक कंप्यूटर रखा जाए, एक बीच में चल लगा एक बारो है, तो उसका अगर कोई थोड़ी सी भी उसमें नुकस रहेगी तो फिर अपना खेत है ऊंचा नीचा हो जाएगा। एक भरोसे की बात है कि भाई कंप्यूटराइज गोड़ी बढ़िया एक अच्छी लेजर लेवलिंग मशीन है, बढ़िया समतल करा है, बिल्कुल ये बढ़िया बात है। तो इसमें भाई अपना ये ध्यान रखें, और बाकी जो भाई अपने छोटे मोटे कृषि यंत्र हैं, जैसे सुहागा है, पाटा है, भाई अपना मैज है, ये अपने दीमक से बचाव है, बारिश से बचाव है, सुरक्षित जो अपने खेत में कोई गैरेज है या फिर कोई अपना भाई जिस तरह कोई बरंडा है खेत में उड़ा खड़ा करें। और भाई इसके बाद हम बात करें कृषि यंत्र में, भाई जो हमारे जिस ट्रैक्टर की हम बात करा, देखो भाई देखभाल तो हमने करनी है, जिसका भी ट्रैक्टर चाहे बेसिक पुराना मॉडल हो, जो अच्छी छाया के नीचे रहेगा, बढ़िया सुरक्षित जगह पर रहेगा, तो उसमें एक तो ओरिजिनल पेंट ठीक ठाक रहेगा, बड़ा एक आकर्षण हो जाए, हमने बेचना ही पड़ जाए तो पहले उसका अपन का भी पहला जा दुरूप का, तो पहले ट्रैक्टर का अगर बढ़िया सुथरा दिखेगा तो भाई बाज के गाग लूबेगा। और उसमें भाई कोई जर की समस्या या फिर भाई कोई गलन की समस्या वह नहीं आऊगी, कोई माटी मुटी लाग जाए साफ करके, जो उसका भाई साइलेंसर वगैरह का हम ध्यान रखें, और विशेषकर गर्मी का मौसम है, इसमें जो रेडिएटर है उसका मोटा हमने ध्यान रखना है, क्योंकि भाई रेडिएटर में अगर कोई लीकेज है या फिर सफाई नहीं हो रही, सर्विस नहीं हो रही, तो फिर ट्रैक्टर भाई गर्मी दिखाऊगा, गर्मी तो जो इंजन में समस्या है वह भाई इंजन सीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। रेडिएटर का काम अपना सही समय पर रखें, और पानी पात जो भी डालना है, जिस तरह हम ट्रैक्टर सवेरे लेके जाऊँ तो उसका गेज से जो मोबिल ऑयल का एक स्तर है वो ज़रूर देख लें, इतना हमें पता भी होना चाहिए। और भाई कोई भी अपने देखो छोटी बारीकी की हम बात करें, पीछे जो ट्रेली का या जो हुक है या फिर भाई कोई भी सा वो है, उसमें किसी भी प्रकार की भाई कोई पिन की समस्या है, पिन हम नहीं डालते, इन बातें हम ध्यान रखें। बाकी समय रहेगा जिक्र और भी करेंगे, एक रागनी और भजन सुनवा दें, लेकिन इनका भी कलाकार रहेंगे करमवीर मोरखी।

तो भी आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे भी अपने करमवीर मोरखी, और खेत खलियान कार्यक्रम में जिक्र मारा था भाई जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनकी देखभाल के बारे में। तो भाई जो भी अपने जितने भी कृषि यंत्र हैं भाई, धूड़ माटी का खेत में काम हो है, पहली बात तो भाई जिस तरह हमने काम ले लिए साफ सफाई रखें, और एक जो निश्चित जगह है, बढ़िया जगह है, जो भाई कोई अपने चार दीवारी सी ओटडे है भाई, अपने कार्ड रखे हों, कई बार देखा है पशु आपस में गुड़ पड़े और भाई गौरवे को एरो खड़ी है, बोले अब उस पर जोटा पड़ गया, उस पर भाई कागड़ पड़ गया, कोई भैंस के लागी, गौ माता के लागी, या फिर कई भाई साहब ही करें देखा है कल्टिवेटर एरो के भैंसा ने बांधे हैं, बेल अटका दे हैं, इसी गलती भाई भूल के भी ना करें। इस तरह के जो कृषि यंत्र हैं जो अपना भाई जमीन न ची रहे हैं तेज धार वाले हैं, वो अपना भाई कि इसी जगह पर खड़े करें, जड़ भी कोई बालक है, कोई मतलब कोई जानवर है, कोई पशु है, वो संपर्क में उसके ना आवे। और भाई कोई भी हमारा जिस तरह ट्रैक्टर है, कोई दुमादे है, कोई भाई उसका एक तालमेल एर्रो के साथ में कह तावे के एर्रो है, कितना उस पावर का ट्रैक्टर है, सारा तालमेल के साथ में हमने काम करना है। नहीं तो भाई नुकागरन बोले भाई जाथर थोड़ा बहुत गनाए उठाना ठीक नहीं ना दी, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाए। और भाई इससे एक साथ आज का भी खेत खलियान कार्यक्रम समाप्त हुआ, चलेंगे सारे बण भैया ने, राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना? मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:10 हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी,
1: और आपको ऋषिता का भी नमस्कार साथियों।
0: और ऋषिता, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मातृभाषा जो है वो हमारी पहचान, संस्कृति और संस्कारों की सबसे सुंदर धरोहर है। जो अपनी मातृभाषा का सम्मान करता है वो अपनी जड़ों और संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहता है। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने साथियों से इसी विषय पर बात करेंगे। और साथियों, आपको बता दें कि मातृभाषा किसी व्यक्ति की पहचान, संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का आधार होती है। ये केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज की आत्मा और सभ्यता की धरोहर भी है।

0: भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषाओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि देश की विभिन्न भाषाएं सुरक्षित रहें और नई पीढ़ी उनसे जुड़ी रहे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर विशेष बल दिया गया है और सरकार का मानना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके विषयों को अधिक सरलता से समझ सकते हैं तथा उनका मानसिक और बौद्धिक विकास बेहतर होता है।
1: बिल्कुल सही कहा नंदिनी, और कि भारत सरकार ने मातृभाषाओं ने संरक्षण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और जैसा नंदिनी आपने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए ताकि बच्चे अपनी भाषा से जुड़े रहें। इसके अलावा CIIL द्वारा देश की विभिन्न भाषाओं की डॉक्यूमेंटेशन और खोज का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने भाषा संगम और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न भाषाओं को प्रोत्साहित किया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों, और समय समय पर नई भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग पर विचार किया जाता है।
0: जी बिल्कुल ऋषिता, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ सरकार विभिन्न साहित्य अकादमियों, भाषा संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी मातृभाषाओं को प्रोत्साहित करती है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, पंजाबी, बंगाली तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ताकि लोग अपनी भाषा से जुड़े रहें। मातृभाषा का संरक्षण केवल सरकार की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। यदि लोग अपनी भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में गर्व महसूस करेंगे तभी हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसके विकास में सहयोग देना चाहिए। और ऋषिता, एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि भाषा केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी पहचान और विरासत है और ये वो माध्यम है जिसमें हृदय सबसे पहले बोलना सीखता है।
1: बिल्कुल सही कहा नंदिनी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि आज है शनिवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं रोजगार समाचार विशेषांक। तो कार्यक्रम में पहला रोजगार समाचार आप सभी के लिए है। भारतीय स्टेट बैंक ने कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर 821 कंकरेंट ऑडिटर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जून 2026 को या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पद न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उपलब्ध हैं या जब तक कि अधिकारी 35 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, जो भी पहले हो। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए चयन किया जाएगा। वेबसाइट है sbi.bank.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं, sbi.bank.in। या इन रिक्तियों को विभिन्न सर्कलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें नियमित और बैकलॉग दोनों पर शामिल होते हैं। अगला रोजगार समाचार आप लोगों के लिए है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ऊपरी डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, हेड कांस्टेबल या वन गार्ड और ड्राइवर सहित 11 रिक्तियों के लिए भर्ती जारी की है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत में संगठित वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 28 के तहत बनाए गए प्रोविजंस के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठित है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं, जो 10 जून 2026 है। नौकरी का स्थान नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई होगा। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 56 वर्ष के आप हो सकते हैं। पे स्केल आपका रहेगा लेवल 2 से लेवल 10 तक। एप्लीकेशन मोड रहेगा पोस्ट के जरिए।

0: रहेगी 9 जून 2026। और आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, SSB इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल रहेगी। आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बता दें, upsc.gov.in। वेबसाइट हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, upsc.gov.in। अगला रोजगार विशेषांक कुछ इस तरह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा अप्रेंटिस भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन 19 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं, तो अंतिम तिथि की बात करें तो वो आप सभी के लिए रहेगी 8 जून 2026। जी हाँ साथियों, और इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 7,150 पदों पर भर्ती की जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल रहेगी। और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, sbi.bank.in। वेबसाइट हम फिर से दोहरा देते हैं, sbi.bank.in।
1: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं गीत फिल्म इंतकाम से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म इंतकाम से, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जी बिल्कुल ऋषिता, और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और अपने साथियों को बता दें कि SSC द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जो है 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, तो वहीं अंतिम तिथि 22 जून 2026 रहेगी। रिक्त पदों की अगर बात करें तो रिक्त पद हैं 12,256, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बता दें, ssc.gov.in। वेबसाइट हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ssc.gov.in। अगला रोज़गार समाचार कुछ इस प्रकार है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के 11,127 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 15 मई से 14 जून तक आधिकारिक वेबसाइट RRB अप्लाई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपके लिए रहेगी 10वीं के साथ साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग डिग्री या BTEC आपके पास होना अनिवार्य है। और आयु सीमा जो है 18 से 30 वर्ष रहेगी। और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता दें, www.rrbcdg.gov.in। वेबसाइट हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, नोट कीजिएगा, www.rrbcdg.gov.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 85 डिप्यूटी मैनेजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nhitcl.com के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वेबसाइट है nhitcl.com। इन पदों के लिए चयन सिविल इंजीनियरिंग में गेट स्कोर के सर्वश्रेष्ठ के आधार पर किया जाएगा, जो 2024 या 2025 या 2026 वर्ष में प्राप्त किया जाता है। अकॉर्डिंगली उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन 3 वर्षों में से किसी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्रदान करें। आयु सीमा रहेगी अधिकतम 34 वर्ष। अगला रोजगार समाचार है, CSIR CCMB देश भर में टेक्नीशियन, तकनीकी अधिकारी और अन्य सहित 28 विभिन्न पदों के लिए भर्ती कर रहा है। आवेदन 26 मई 2026 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट है ccmb.res.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं, ccmb.res.in।
1: तो ऋषिता, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवा देते हैं अपने साथियों को कार्यक्रम का ये अगला गीत, जो है फिल्म गुरु से। आवाजें हैं AR रहमान, चिन्मई, मुर्तुजा खान और कादिर खान की। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म गुरु से। आवाज़ें थी AR रहमान, चिन्मयी, मुर्तुजा खान और कादिर खान की। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत दिया था AR रहमान ने।
1: बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अगला रोजगार समाचार है। इंडियन नेवी में भर्ती निकली है दोस्तों BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc और कंप्यूटर साइंस के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 1 लाख तक हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। इसमें SSC अधिकारियों और अग्निवीरों के पद शामिल हैं। SSC IT के 15 पद हैं। वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। वेबसाइट दोबारा दोहरा देते हैं joinindiannavy.gov.in।
0: अगला रोजगार विशेषांक कुछ इस प्रकार है। हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने क्लर्क के 1,265 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 मई 2026 से शुरू होनी है और अंतिम तिथि आपको बता दें तो वो 23 जून 2026 रहेगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम और CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इच्छुक अभ्यर्थी का कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होने के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होना भी अनिवार्य है। और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, www.ssc.gov.in। वेबसाइट हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, www.ssc.gov.in।
1: अगले रोजगार समाचार के लिए 28 मई से पहले आप इस PSC सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि MCL ने 500 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए, टेक्नीशियन के लिए 350 पद और इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 पद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा और परीक्षा CBT होगी। जिन छात्रों ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है या ITI इलेक्ट्रीशियन है, वे आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 60,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकती है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होगी। आवेदन शुल्क 1180 रुपये होगा। वेबसाइट है cdn.dglm.com। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा देते हैं cdn.dgalm.com।
0: इसी के साथ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 52 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 15 आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो वो 15 मई से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 29 मई 2026 रहेगी। आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। आयु सीमा आपको बता दें, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता है अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और गेट 2025 की परीक्षा पास किया होना अनिवार्य है। और इस पद से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए हम वेबसाइट आपको बता देते हैं, नोट कीजिएगा, www.ntpc.co.in। वेबसाइट हम आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, www.ntpc.co.in।
1: अगला रोजगार समाचार के लिए 11 जून से पहले आप इस सरकारी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया ने 660 मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसी निकाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ CBT होगी। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कई अन्य ब्रांच के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। और सैलरी की बात करें तो 18 लाख पर एनम तक जा सकती है। आयु सीमा रहेगी अधिकतम 30 वर्ष और वेबसाइट है coalindia.in। इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात 9:15। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत का विषय रहेगा केचुआ खाद बनाने का तरीका व उपयोग। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 7:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बालकुंज आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर सुनीता रानी के साथ बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में मछलियों की देखभाल। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 भेंट वार्ता एक किसान से सुनवाई जाएगी। खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे सुबह 9:00 कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध के अंतर्गत और शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। छः 10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी और कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाई अनुभव अनिल भाई के राम राम। भाई मौसम का जिक्र अगर आओ तो भाई देखो बहुत सारी जगह पे अच्छा खासी धूप थी, तेज़ गर्मी भी थी। कुछ एक जगह पे अपना हरियाणा प्रदेश में कितने छिटपुट बूंदाबांदी भी हुई है, तेज़ हवा भी चली है और ये मौसम तो भी इस टाइम का हिस्सा हुए है कि देखो जिस दिन घना घूमो हम देखा मौसम बिल्कुल वही ला लो कि जब भाई अपना मोमबत्ती दीवा भी नहीं बुझे खेत में भी बात करा इतना सुन हो जाए, उसके बाद में हम ये मान के चले पक्की आंधी आओगी क्योंकि जो हवा गर्म होके ऊपर चली जाए और फिर जो भाई नुका ना ऊपरली बाढ़ और फिर नीचे चली वो जब सिस्टम बिगड़ा है तो फिर ये चक्रवात और ये भी तूफान और ये आंधी इस तरह का मौसम हो जाए है। तो इस मौसम में हमारा जो पशुधन है उनका भी हमने ध्यान रखना, जो भी अपना भाई कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं, इसी पीछे भी तूफान आया था भैया की सौर ऊर्जा की प्लेट थी खेत में वह उड़ गई टूट गई नुकसान हो गया, छाता पे को टंकी रखी थी को डारा रहे को टिन रहे तोड़ा बहुत सारा उड़ गया। तो थोड़े से जो भाई पुख्ता इंतज़ाम है पहले यू दिखे कि भाई देखो आगे मौसम है भाई ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बारिश हालांकि कम बता रहा कि ज़्यादा भी आ जाए तो थोड़ा सा अपना पहले इंतज़ाम भैया रखने को कूप है। कई भाई तो क्या करें तूड़ेगा न्यार का पहले अपने सीधा भाई खेत में सीधी नीचे छोड़ के तूड़ी जिस तरह काटी डांग लागी और उसको ऊपर अपने इस तरह करते हैं भाई को त्रिपाल मारते हैं पलड़ मारते हैं तो लेकिन नीचे का जो तूड़ा उसमें ख़राब हो जाए जो भाई अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से करें कूप बनाओ हैं या फिर भाई अपना कोई ईसाक जुगाड़ कर लें बिना छत का कमरा बना लें बारना छोड़ के उसमें अच्छी डलगा के अपना भरते हैं ऊपर उसको बढ़िया भाई को त्रपाल त्रिपुल ला के अच्छी डाल दीप दे हैं तो फिर उसमें जो हमारा तूड़ा है उसका बचा रह जाए है। बाकी भाई देखो खूब खांग चल लेंगी और खूब बजट की गर्मी इस मौसम में जो भी हमारे खेत खाली पड़े हैं जितने हमारे भाई खेत खाली पड़े हैं इस मौसम में उनमें गहरी जुताई हम करके छोड़ दें, ना को सुहागा मारना ना को पाटा मारना, जो पलाव हुआ अपने ट्रैक्टर के पीछे दो तीन जो खूट काट रहे हैं वो मार के अपना छोड़ दें ताकि जो भाई सूरज की जो तपिस है जो खांग है जो गर्मी है वह नीचे तक पहुँचे, ज़मीन में जितने भी जो भी सूत्र गर्मी है जो हम खुली आँखें तो नहीं देख सकते वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। हरी खाद का अगर भाई लगाना चाहूँ तो भाई जिस तरह बारिश का पहला शुरू की शुरुआती बारिश हुआ होगी उसमें भाई अपना ढेंचा लगा सके हैं, जिन भाई धान लेने हैं हरी खाद बनानी है पानी पात का प्रबंध है तो भाई अपना पानी ला के ढेंचा छिड़क सके हैं, जिस तरह वो तागड़ी तागड़ी हो जाए कच्ची अवस्था में बिना रोटावेटर तक ज़मीन में मिला दें ताकि अच्छी डाल उसकी खाद भी माटी में रल जाए और जल्दी खाद बन जाए जल्दी तैयार हो जाए। हरी खाद में भाई बार बार जिक्र आओ है जो कृषि वैज्ञानिक है वह बताओ हैं चौपाल में भी अपना जिक्र चल रहा है भाई एक बहुत प्राकृतिक गुण है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके कुछ तो अपना आप खा लें और बाकी जो जड़ ग्रंथि है जितनी भी हमारी दलनी फसल हम देखेंगे भाई चने के बूटे हम पाड़ा मोटे तौर पर तो चने की जो जड़ है उसमें गांठ पाओगी ये जड़ ग्रंथि है, इसी तरह दलहनी फसल की कोई भी हम जड़ निकालेंगे तो उसमें जड़ ग्रंथियों हैं छोटी छोटी गांठ सी हैं उनके माध्यम से जो भी नाइट्रोजन से ली हुई अपने वायुमंडल से ली हुई नाइट्रोजन है वह ज़मीन में कुछ खा लें कुछ हिस्सा ज़मीन में छोड़ दें हैं और ज़मीन की एक जो भौतिक दशा है कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा इसमें बढ़े है। बाकी भी देखो जितने भी हमारे काम हैं वो तो हमने करने हैं लेकिन आज देखा कि भी हर चीज़ हमारी व्यापारिक होगी, चाहे दूध घी की बात करा, चाहे खेतम अपनों पूड़ी फरड़े की बात करा, भैया गेहूं की बात करा, मतलब जो भी अपना रबी की फसलें खरीफ की फसलें सारी आजमारी सी होगी कि नकदी फसल होगी और भी काम भी नहीं चलता, मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए। लेकिन कुछ इसी है कि भाई जिस तरह बैंक की जो संस्थाएं हैं, आपने हर एक गाँव में लगभग बैंक हो रहे हैं, उसमें किसान कार्ड का जो लाभ है वो भी अपने किसान भाई ले सके हैं। शुरुआती दौर में लगभग मान के चला भाई, अगर शुरुआती दौर से बनवाते हैं लाख एक रुपये के लग आसपास मिल जाए है। फर्द गिरदावरी अंतकाल ये अपन भाई बैंक में उपलब्ध कराने पड़ेंगे, सिविल रिपोर्ट निकलेगी और उसके बाद में भाई एक सर्च रिपोर्ट बनेगी वकील के, और उसके बाद में भाई अपने बैंक का नाम रजिस्ट्री हो जाएगी और उसका जो लाभ हम ले सकते हैं, फसल बीमा भी उसमें हर साल जुड़ेगा, हम जाके बता सकें भाई ये हमने फसल बो रखी है, फसल बीमा में जोड़ दो, बहुत सारे उसके लाभ हैं, जितनी हमने ज़रूरत है उतना पैसा हम ले सकते हैं। 3 लाख तक उसमें भाई 7% ब्याज है, अगर हमारा ठीक लेन देन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो उसमें 3% की भी हमने सब्सिडी भी मिल जाए है, ये भी एक मोटा लाभ हमारा हो जाए है, तो 4% ब्याज उसमें पड़ जाए है। और बाकी भी बहुत सारे से भी हमने कोई वर्मी कंपोस्ट का करना है या फिर अपना कोई सहायक धंधा करना है, मछली पालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, और कोई अपने भी कृषि यंत्रा की अगर बात आओ है या फिर अपना बागवानी की हम बात करा तो उस पर भी इसमें भाई भारी छूट है, उस पर भी हम जुड़ अपने जुड़ सके हैं और अच्छा लाभ हम ले सके हैं। या फिर अपना भाई खेत में कोई जिस तरह या फिर अपने को गेर में खेत में कोई मशरूम का भाई काम करना चाहो है और भाई कोई पोली हाउस बनाना चाहो, यानी कि कोई भी काम करना चाहो बागवानी का या फिर कृषि वानिकी का, सफ़ेदा है, पॉपुलर है, तो बहुत सारा इसमें हमारा फ़ायदा जब होगा भाई नज़दीकी जो भी अपने ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर जो अपने एडीओज बैठे हैं उनसे भाई मिल सकें कृषि अधिकारियां थे, और नहीं तो भाई अपना जिला स्तर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उड़ भी भाई जानकारी ले सकें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार जो भी किसान की सेवा में है उड़ बहुत सारे से सहायक धंधा का प्रशिक्षण भी हमने मिला है। इन चीज़ों तक हमने ज़रूर भी जुड़ना पड़ेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसमें अपना पंजीकरण करवाना चाहिए, और जो भी हमने भाई फसल बो रखी है किला नंबर है उसका सही ठीक ठाक सामने ब्यौरा देना चाहिए। भगवान ना अगर कोई सी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बाढ़ है, कोई अकाल है, तो उस अवस्था में क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस पर हमने ये बताना चाहिए भी मैंने ये फसल बो रखी थी और ये मेरे इसमें खराबा हो गया। हम सोच सोच में बैठे रहे भाई नू हो गया, नू हो गया, नू हो गया, उस तो भी काम नहीं चल रहा, पहले कहा कर देना बोला जमींदार का तक में छाना हो भाई, लेकिन आज की जो अवस्था है खर्चे इतने बढ़ गए हमने पहले छाना होना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो बीमार घर का फूस और घर का नाज बस ये दो ही चीज़ चल रहा करती, लेकिन ये हमारे जो खर्चे हैं वे ज़्यादा बढ़ गए। तो इन चीज़ों तो भाई अपने जुड़े हैं और अपने जो उन्नत बीज हैं उनका चुनाव हम करें, जो अपना सिफारशुदा मात्रा में खाद है उनका, बल्कि सिफारशुदा की किस्मत ये है कि भाई संतुलित मात्रा में खाद अगर दें, संतुलित मात्रा में खाद जब दे जाएगी जब भी हम मिट्टी की जांच कराएंगे और अपना जो पानी है उसकी भी जांच कराएंगे। कई बार हम ये हो जाए भी जो हमारा पानी है बोले बहुत बढ़िया है, चाय नहीं पाटती भाई, साबुन नहीं पाटती, और भाई वो फसल की हमारी ज़मीन में रे कलर की चास हो जाए, फसल उसमें कमज़ोर हो, कई बार इसका भी हो जाए कि भाई पानी थोड़ा सा हल्का सा उसमें कड़वाट हो और फसल उसमें ठीक ठाक लग जाए। तो देखो ये सारा जो एक तामा जामा है भाई अपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार का मृदा विज्ञान विभाग है उड़ भाई जाँच करा सकते हैं, जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र उड़ भाई से बार बार ये जिक्र चल रहा है। ई मौसम के नाम से जो ऐप है अपना वो प्ले स्टोर से भाई डाउनलोड कर सकें हैं, उसमें मौसम की जो जानकारी वो तो मिलेगी, रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, भाई किस तरह से हमने उनका रख रखाव करना है, जो सहायक धंधा के बारे में भी उसमें जानकारी दी जाएगी। तो इन चीज़ों तो भाई ज़रूर जुड़ें। और बाकी भाई देखो अगर हम बात करें कि भाई ज़मीन की जो भौतिक दशा है वह बिगड़ती जा रही है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने भाई प्राकृतिक जो खेती है उससे जुड़ना पड़ेगा, और इसमें भाई जो वर्मी कंपोस्ट का केंचुआ खाद है, बोले कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, वो बहुत इसमें एक लाभदायक है, और भाई इसमें बिक्री भी कर सकें पैक्टा में और अपने खेत में प्रयोग कर सकें हैं। इस बार हम भाई एक पूरी जानकारी ले लें भाई, पहले एक अपने डॉक्टर साहब आए थे चौपाल में, बातचीत सुनी थी भैया ने पहले भी, एक बार फिर से सुनो भाई केंचुआ खाद के फायदे।
4: भाई आज बातचीत करेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचवा खाद, और इसके बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी को। आप विभाग अध्यक्ष हैं, जूलॉजी विज्ञान है जो बेसिक साइंस कॉलेज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका स्टूडियो में।
5: धन्यवाद संजय भाई। ये जो केचुआ खाद बनाने का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए।
4: जी,
5: ये ना केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति को अच्छा करता है, इसके अलावा ये उसमें मॉइस्चर या आर्द्रता की भी जो मेंटेनेंस है वो करता है, पानी की उपलब्धता को
4: सुनिश्चित
5: करता है।
4: जी डॉक्टर साहब, उससे पहले थोड़ा सा ये जो केचुआ है इसके बारे में जानकारी चाहूँगे कि एक तो आम जो हमारे श्रोता है वो देखते हैं, एक आप वैज्ञानिक दृष्टि से इसका थोड़ा सा उलिया और उसका वो
5: केचुआ जो है वो एनिलिडा एक प्रजाति है उसका जंतु है। सेगमेंटेड इसकी शरीर होता है, बॉडी होती है, और मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों एक ही
4: जीव
5: में होते हैं। ये इसलिए एक ही जीव में होते हैं जिससे कि इनकी जो प्रजनन है वो बढ़ सके।
4: अच्छा,
5: प्रजनन बढ़ सके और इनकी संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भूमि में, जिससे कि भूमि उपजाऊ हो सके और अन्य उसमें किसानों को लाभ हो सके।
4: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखते हैं कि अच्छी बारिश होती है तो ज़मीन में से निकलते हैं, तो इनमें जो देसी एक तो हैं जो कुदरती रूप से निकलते हैं वो, और जिनका हम पालन करते हैं, इनमें क्या कुछ फ़र्क है?
5: नहीं, वो बहुत अच्छा सवाल है संजय भाई आपका। हमारे पास यहाँ दो किस्म के केचुए हैं, एक तो एक्जोटिक स्पीसीज जो बाहरी केचुए हैं
4: जी,
5: जिसमें आइसिनिया फाइटिडा है जिसे हम लाल वर्म भी कहते हैं
4: जी,
5: यूड्रिलस यूजिनिया है, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस है, ये तो है बाहर के केचुए जो बाहर से हम भारत में लाए हैं। दूसरे हैं इंडिजिनस किस्म के केचुए जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, फेरिटिमा पोस्टिमा, जो हमारा नॉर्मल घरों में पाया जाता है, जिसके बारे में आपने कहा कि वो बारिश होती है तो घर के आंगन में या पक्की जगह पर वो केचुए आ जाते हैं और बच्चे उसके साथ खेलते हैं। वो जो ये सिनेरियो था आज से 25-30 साल पहले ये था कि भी आपके घर में बारिश हुई और आपकी जो पक्की जगह है उसमें बहुत सारे केचुए आ जाते थे और आप उनको, माँ बहने उनको बाहर निकालती थी झाड़ू के साथ। आज वो प्रदेश शायद आप ना देख पाए क्योंकि खेतों में, घरों में, आसपास रासायनिक खादों का उपयोग होने लग गया, उसकी वजह से ना केवल केचुए मर जाते हैं बल्कि उनकी जो प्रजनन शक्ति है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो इसलिए हम आजकल ये जो दृश्य है घरों में कम दिखता तो है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में कहीं कहीं ये दृश्य दिखता है। तो मैं आपके मुख्य टॉपिक पे आती हूँ कि जैसे दो किस्म के हैं इंडिजिनस।
4: सब एक बात और रहेगी कि जब वो निकलते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें और आमतौर पर सांप के बच्चों में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, एक संदेह रहता है, उसमें मोटा मोटा जो फ़र्क है ना वो बताओ।
5: सांप जो है वो रेप्टाइल्स में आते हैं
4: जी,
5: रेप्टाइल या रेप्टिलिया में आते हैं, ये निमेटोड होते हैं। सांप की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती,
4: सेगमेंटेड यानी टुकड़ों में
5: अगर आप देखो ना केंचुए की बॉडी को तो टुकड़ों में बटी हुई दिखती है
4: जी,
5: तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस सांप और उसमें केंचुए में होता है। कुछ जो थोड़ा सा और अगर जानकारी हो तो आपको पता भी लग जाता है कि उसके साइज पे, बच्चे के साइज पे
4: जी,
5: केंचुए का बच्चे का साइज बहुत, अडल्ट का साइज ही सांप के बच्चों जितना होता है, जो आइसिनिया फाइटिडा है, जो लाल केंचुआ है, जो कि नॉर्मली आजकल बाहर की वैरायटी है जो कि हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में आजकल प्रयोग होता है
4: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा है कि केचुए के मुंह की साइड में 3-4 वो इकट्ठे से वो होते हैं, जुड़े हुए से होते हैं, तो ये उसकी कोई खास
5: नहीं, ये केचुआ नहीं हो सकता कि वो तो अपने दूसरी वैरायटी के रेप्टाइल्स होते हैं, तीन मुंह से निकलते
4: नहीं, नहीं मुंह की साइड में, मतलब एक मुंह हो गया और पूंछ हो गया, मुंह की साइड में शुरू के 5-7 वो उसके जोड़ छोड़ के फिर 2 या 3 जुड़े हुए से कुछ इस तरह
5: वो क्लाइटेलम होता है, वो जब केचुआ मैच्योरिटी पे आता है या थोड़ी साइज उसका प्रजनन क्षमता बढ़ती है तो वो क्लाइटेलम डेवलप होता है
4: जी,
5: उससे उसके प्रजनन अंगों की स्थिति का पता लगता है
4: जी। तो मतलब ये एक
5: केचुए की पहचान है,
4: पिछाड़ के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
5: बिल्कुल, क्लाइटेलम होता है वो
4: जी।
5: हाँ जी
4: जी। अब डॉक्टर साहब इसके पालने की बात करेंगे, कि किस तरह से इसको पाल सकते हैं।
5: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल संजय भाई आपका। हम इसको दो विधियों से पाल सकते हैं, एक तो पिट या खड्डे में, जैसी किसान के पास भूमि हो या जैसा किसान का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो जमीन का, उस हिसाब से वो अपनी विधि चुन सकता है। एक तो पिट विधि है या भूमि खड्डे में खड्डा खोद के, उसमें 4x4 का खड्डा भी हो सकता है, 6x6 का भी हो सकता है, जितनी उसकी क्षमता है किसान की उस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले तो उसमें हम जो ये पैलेट्स होते हैं रोड़ी

0: जाती है थोड़ी,
1: तो
0: जो भी वेस्ट हो उसके लिए, घास फूस कुछ भी, पत्ते हैं,
1: जी
0: पत्तों का भी बनता है खेत में, पत्ते भी इकट्ठे हो जाते हैं।
1: किन किन चीजों को छोड़ के डाल सकते हैं?
0: जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिक पदार्थ है जो गलने वाला हो, सड़ने वाला हो, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं।
1: यानी कि जिस तरह शीशा हो गया, प्लास्टिक
0: वो
1: हो गया,
0: प्लास्टिक शीशा गलता तो नहीं
1: इन
0: ना जी?
1: चीजों को
0: हाँ
1: छोड़
0: हाँ
1: के
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये
1: बाकी।
0: गलने वाली चीजें नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है।
1: जी
0: पॉलीथीन भी नहीं गलता एक छोटे ड्यूरेशन में,
1: जी जी
0: पॉलीथीन को भी बड़ा टाइम लगता है गलने में, 400 साल लगते हैं।
1: जी
0: तो 400 साल में जो पहला पॉलीथीन बना अभी तक वो भी नहीं गला।
1: जी जी तो यानी कि ये चीज़ें हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सके हैं।
0: हाँ जी,
1: तो जिस तरह आपने बताया कि इसकी अलग अलग तह लगानी है, तो पहले गोबर है या हमारे पास में जो
0: पहले
1: घास फूस
0: पैलेट्स,
1: है
0: हाँ,
1: वो
0: उसके
1: डाल
0: बाद,
1: दें।
0: उसके बाद जो आपने वर्म्स हैं, जो केचुए हैं,
1: जी
0: चाहे वो किसी वैरायटी के हों, आइसिनिया आजकल प्रयोग में होता है, लाल वर्म कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रजनन करता है और जल्दी ही खाद बनाता है।
1: जी
0: तो जो हमें ऐसी प्रजाति चाहिए जो जल्दी काम करे,
1: जी जी
0: है ना, तो
1: जी
0: जल्दी काम करे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो वही हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको उसकी लेयर आ जाती है,
1: जी
0: उसके बाद उसको कोई भी पोरस चीज़ है, जैसे पल्ली होती है खेतों में,
1: जी
0: बोरियों की पल्ली होती है, उससे ढक देते हैं,
1: जी
0: जिससे कि उसमें मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे, जिससे आर्द्रता
1: नमी
0: उसमें, नमी बनी
1: नमी
0: रहे,
1: बनी रहे।
0: नमी बनी रहे, क्योंकि
1: जी
0: नमी भी बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: केंचुए के विकास और केंचुए के प्रजनन और उसके कंपोस्टिंग बनाने के लिए।
1: जी
0: ये तो एक विधि हुई जो पिट विधि होगी।
1: डॉक्टर साहब, एक बार जानना चाहूँगे कि इसमें कोई मात्रा रहती है कि भाई इतना गोबर का खाद हो और इतना उसमें केंचुए छोड़े जा सकते हैं, इस तरह का कोई अनुपात
0: नॉर्मली
1: है?
0: 10 बाय 10 का अगर अपने गड्ढा है,
1: जी
0: 10 बाय, तो उसमें 1,000 केंचुए, हम 1 किलो केंचुए आते हैं,
1: जी
0: वो छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल, ये पुराने टाइम में जब आपको केंचुए नहीं मिलते थे,
1: जी
0: तब आप इस तरह की भी एक इकोनॉमिकल वायबिलिटी बनी रहे
1: जी
0: कि
1: जी
0: केंचुए बड़े दुर्लभ होते थे।
1: जी
0: अब तो जगह जगह किसानों ने केंचुए के प्लांट लगा रखे हैं,
1: जी
0: तो इस तरह की कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं। 100 के भी अगर 1,000 के भी 1,020 डाल दो या 1,500 डाल दो, तो
1: जी
0: जितनी जल्दी ही वो
1: बना
0: आपको
1: लेते
0: बना
1: हैं।
0: देंगे खाद
1: जी
0: को।
1: अच्छा, एक तो आपने बताया भी खड्डा खोद के उसमें कर सकते हैं, दूसरा तरीका?
0: दूसरा तरीका ढेरी विधि होती है, ढेरी ढेरिया
1: अच्छा
0: बना लेते हैं अपन।
1: अच्छा
0: जैसे कोई खेत में किसान के पास जगह है तो शेड बना लेता है, वो
1: जी
0: शेड बना के उसके
1: जी
0: नीचे ढेरियाँ जो है, ढेरियाँ उसके नीचे लग जाती हैं। ढेरियाँ जो है वो अर्धचंद्राकार बनती हैं, जैसे
1: थोड़ी
0: आप
1: गोल सी
0: गोल सी
1: नारी।
0: अर्धचंद्राकार बनती हैं, उससे उसके बाद उस पर आप कोई भी मटेरियल चढ़ा नहीं सकते। अर्धचंद्राकार के ऊपर का चढ़ाओगे तो नीचे गिर जाएगा,
1: जी,
0: एक ऐसे अंदर अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर बन जाता है ढेरियों में। वो 10 फिट की भी हो सकती है, वो 20 फिट की भी हो सकती है लंबाई में,
1: अच्छे
0: जितनी आपके पास जगह किसान के पास उपलब्ध हो और जितनी वो कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी का आजकल जमाना है,
1: जी,
0: मतलब हम
1: मतलब
0: किसान को
1: कोई,
0: बांध नहीं सकते कि
1: हाँ
0: 10 फीट ही कर लो,
1: कोई,
0: 15
1: हाँ
0: फीट ही कर लो,
1: मतलब
0: या अगर उसके पास
1: अपन,
0: थोड़ी ज़मीन है तो थोड़ी पे कर ले, ज़्यादा है तो ज़्यादा पे कर ले। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है सब्सिडी वगैरह की, वो एक पर्टिकुलर
1: वो
0: 20 फुट
1: अलग
0: की है,
1: बात हो
0: वो अलग
1: जाए।
0: बात हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है।
1: तो इसमें खड्डा जिस तरह आपने बताया ढेर लगा के फिर उसमें हम कर सके हैं, तो इसमें फिर वो जो केंचुए हैं वो डॉक्टर साहब बचे रहेंगे, इधर उधर तो नहीं भाजेंगे?
0: नहीं, उसके ऊपर वही बोरी अपना ढक देते हैं,
1: अच्छा
0: बोरी ढक देते हैं पानी से, जिसमें मॉइस्चर बना रहे। और
1: जी
0: जब 40, 45, 50 दिनों के बाद खाद बनती है, तो खाद जैसे चाय पत्ती के सूखे, सूखी चाय पत्ती होती है,
1: जी
0: वैसे नीचे से आप कलेक्ट करते रहो डेयरी के नीचे,
1: जी
0: वो गिर जाएगी नीचे, अपने आप ही गिर जाएगी। जैसे डेयरी में खाद बनी, केंचुए
1: जी
0: ने मूवमेंट करी, तो वो जो उसकी जो बीट होती है या जो उसका फिकल मैटर होता है, वो अपने आप डेयरी के नीचे तय पे आ जाएगा। वहाँ से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं फर्दर, जैसे छानना ही उसमें ज़्यादातर होता है कि भाई कोई मोटी चीज़ ना रह जाए, छान के उसको बोरियों में भर लेते हैं। और आजकल ये किसान जो है जगह जगह गौशाला में किसानों के पास जगह जगह उन्होंने कर रखा है। ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है
1: जी
0: उसका, रासायनिक खादों का,
1: जी
0: और इसकी महत्वता बहुत है। तो जिस चीज़ की महत्वता बहुत होगी, किसान उसको करेगा ही करेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया कि बीच में और नाली सी बना के, पक्की नाली सी बना दे हैं 2-3 फुट की, तो वो तरीका भी ठीक है?
0: उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ जाती है,
1: लागत बढ़ जाएगी
0: लागत बढ़
1: उसमें?
0: जाती है। हमें सिंपल, जितना सिंप्लीफाइड हो उतना बेटर रहता है। जितना साधारण तरीके से आप
1: जी
0: किसान करे,
1: जी
0: अपने लोकल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए, जो उसके पास उपलब्ध है
1: जी
0: बगैर किसी बाहर की सहायता के,
1: जी
0: वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह ये नाली बना के भाई कर रहे हैं, तो उसमें नीचे

0: की जो है वो पक्की रखें या वो उसमें कच्ची रखनी चाहिए?
1: नाली में वही जैसे अपना खड्डा है,
0: जी
1: खड्डा अपन चौरस कर लेते हैं, वो
0: जी
1: लंबी नाली बना लेते हैं, बस इतना ही
0: नहीं,
1: फर्क
0: कई
1: है।
0: पक्की कर लेते हैं ना, दोनों तरफ
1: पक्की,
0: से वो ईंट लगा के
1: हाँ
0: वो पक्की
1: तो
0: कर ले हैं।
1: दोनों तरफ से ईंट लगा के पक्की कर लेते हैं, तो
0: जी
1: नीचे
0: जी
1: तो कच्चा ही है ना जी।
0: आप वो ना, कोई
1: हाँ
0: नीचे कच्चा रखना
1: नीचे कच्चा
0: चाहिए या वो?
1: रखना चाहिए नीचे। अगर उसको पक्का करोगे तो उसमें क्या है कि पानी कई बार ज़्यादा डल गया सपोज करो,
0: जी
1: और पानी ज़्यादा डल गया तो वो फिर उसमें कीचड़ की व्यवस्था, कीचड़ जैसा
0: जी
1: माहौल कर देगा, जिससे केंचुओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब,
1: तो
0: ऐसा तो नहीं भी किससे हमने नीचे तो वो रख दिया, खाली रख दिया, यानी कि पक्का नहीं करा और केंची वो नीचे भाजे
1: नहीं,
0: गिर
1: ऐसे
0: गए।
1: केचुए जो आप कल्चर करते हैं वो नीचे नहीं जाते,
0: जी
1: वो एपिजोइक होते हैं, ऊपर रहने वाले
0: ऊपर
1: केचुए,
0: रहने वाले हैं।
1: ऊपर रहने वाले होते
0: अब जिस तरह
1: केचुए।
0: अपना जो देसी है ये तो सिर्फ बरसात है उसी टाइम दिखाई दें, बाकी तो
1: हाँ
0: नीचे पता नहीं किस चले
1: हाँ वो
0: जाएंगे।
1: नीचे भी अगर जाते हैं तो कोई 1 फुट 1.5 फुट तक जाते हैं,
0: जी
1: एंडोजोइक होते हैं जो
0: जी
1: नीचे
0: जी
1: रहने वाले होते हैं, तो
0: जी
1: उनकी महत्वता कम होती है, क्योंकि हमने तो जो खाद बनानी है वो बाहरी मैटर से बनवानी है,
0: जी
1: आर्टिफिशियल जो बाहर अपना फूड है
0: जी
1: जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे खाद बनानी है, तो हमें एपिजोइक जो स्पीसीज है केंचुए की वो ज़्यादा
0: बढ़िया रहेगी।
1: बढ़िया रहती है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर पानी का भी किस तरह के ध्यान रखना है भाई? कितनी नमी, आपने बताया भाई नीचे अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो भी ठीक
1: तो
0: नहीं
1: भी
0: है,
1: हाँ
0: तो इसमें
1: जी,
0: किस तरह ध्यान रखें, किस तरह उस पर पानी का नमी बनाए रखा है?
1: जैसे आप उसकी खाद को एक मुट्ठी में, जो भी मटेरियल है उसको एक मुट्ठी में लो, पानी भी नहीं टपकना चाहिए उसमें, ऐसे दबाओ तो
0: जी
1: पानी नहीं टपकना चाहिए,
0: ठीक है,
1: और ऐसा भी ना हो कि भाई वो आपकी इस पर चिपक जाए, इस
0: अच्छा
1: तरह का भुरभुरा सा जो है वो मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, जिससे
0: जी
1: कि केचुआ जो है वैसे ही केचुआ पानी को, मॉइस्चर को या नमी को रिटेन रखता है अपने अंदर।
0: जी
1: तो जहाँ खेतों में पानी की कमी होती है या बारिश हो गई तो उस पानी को रिटेन करने का या उस पानी को जोड़े रखने का काम भी केंचुआ करता है, जो कि बहुत ही लाभदायक है किसान भाइयों के लिए, इसके अलावा कि वो जो पोषक तत्व है उसकी खाद में होते हैं वो तो है ही।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर कोई ऐसा तो नहीं भी कुछ अंतराल के बाद में उसमें पानी छिड़काव करना हो, या कि एक दो दिन पानी छिड़क के और उसके बाद ढक के रख दिया
1: अब
0: उससे दो
1: ये
0: तीन दिन
1: चीज़ें
0: काम चल
1: मौसम पे
0: जाए?
1: डिपेंड करती हैं, अगर गर्मी का मौसम हो तो आपको अल्टरनेट डे पे उस पर पानी का छिड़काव करें, बोरी पे ही कर दो, अपने आप बोरी से नीचे चला जाता है,
0: जी
1: और अगर बारिश सर्दी का मौसम है या जहाँ पानी कम सूखता है
0: जी
1: तो आप 3-4 दिन की लेबर्टी भी ले सकते हो, कई बार हफ्ता भी आपको ज़रूरत नहीं है पानी देने की, तो वो
0: जी
1: एक थोड़ा सा एक बार बोरी को हटा के देख लो भी कितना मॉइस्चर है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि भाई सूख तो नहीं गया,
0: जी
1: बट है ना, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लो कि भाई
0: जी
1: कितना पानी डालना है
0: डॉक्टर साहब,
1: उसमें।
0: इसमें फिर बाद में भी कुछ गोबर है या कुछ वो उस तरह का चीज़ है उसके उपयोग के लिए डाल सके हैं?
1: हाँ जैसे जैसे आप नीचे से केचुए खाद लेते जाएंगे
0: जी
1: उसके बाद ऊपर आप मटेरियल को रिप्लेस करते जाओ, जो जो आपका बेसिक मटेरियल है
0: जी
1: जिसमें पत्ते भी हो सकते हैं, गोबर भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, छिलके भी हो सकते हैं किचन वेस्ट में, तो वो उसको रिप्लेस करते जाओ, नीचे से खाद लेते जाओ आप।
0: जी डॉक्टर साहब, कितने एक दिन में खाद
1: ये
0: तैयार होता है ये?
1: नॉर्मली जो आइसिनिया फोर्टिडा है वो 50 दिन, 40-50 दिन में अंदर आपकी खाद, पहली जो फसल है वो तैयार, पहली जो आप
0: डेढ़ एक महीने में तैयार
1: डेढ़
0: हो
1: एक
0: जाए?
1: महीने में तैयार हो जाती है, फिर
0: अच्छा
1: और वो आप उसको फिर छान छून के या जैसे भी आप, अगर कुछ छानना तो इसलिए होता है कि बड़ा उसमें कोई रोड़ा ना आ जाए,
0: जी
1: है ना, तो आप खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी, या शहरों में तो आजकल ये किलो के साथ 10 रुपये किलो के साथ तो पॉलिथीन पैक करके लोग जैसे
0: जी
1: सब्जी बेचते हैं वैसे
0: जी
1: बेचते रहते हैं, और वहाँ बहन इसको खरीद भी लेती है।
0: डॉक्टर साहब, अब इसकी जो इसमें जो गुण है वो थोड़ा सा बताओ कि इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कौन कौन सी चीज़ इसमें
1: हाँ
0: गुण है?
1: इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम NPK जो तीन हमारे फसलों के बेसिक तत्व हैं,
0: जी
1: माइक्रो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, बड़े
0: बड़े
1: न्यूट्रेंट्स हैं, बड़े न्यूट्रेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धता है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा CN रेशियो जो है वो कम हो जाती है,
0: कार्बन नाइट्रोजन की
1: CN
0: का
1: रेशियो कम हो
0: अनुपात है
1: जाता है,
0: जो?
1: वो कम हो जाता है
0: जी
1: क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है तो सी नेचुरली कम हो गया, और तो नाइट्रोजन बढ़ गई तो नेचुरली की CN रेशियो जो है या उसका रेशियो का क्या कहते हैं उसको अनुपात,
0: अनुपात
1: वो कम हो जाता है, तो वो
0: जी
1: अच्छा रहता है फसल के लिए। फिर ये फसल पे फसल से फसल डिपेंड करता है भाई, आप ये केचुए की खाद किस फसल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आजकल तो मछली पालन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं केचुए की खाद का।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर जो उसके

0: पकड़े हैं या बच्चे खाद में रह जाए हैं, तो उन्हें किस तरह से अलग करें?
1: वो नॉर्मली हम उसको छान लेते हैं,
0: अच्छा
1: तो जो बड़े केंचुए हैं वो निकाल लेते हैं उसमें,
0: जी
1: इवन छोटा केंचुआ भी है अगर बच्चा भी है तो वो भी उसमें अलग हो जाता है।
0: जी
1: और नीचे जो डेयरी होती है उसमें नीचे होते हैं उसमें के उसमें तो सिर्फ फिकल मटेरियल ही होता है
0: जी
1: नॉर्मली, क्योंकि
0: जी
1: उसमें अब खाने को तो कुछ है नहीं तो केंचुए क्यों आएंगे उसमें,
0: जी
1: वो तो उनका वेस्ट मटेरियल है या फेकल मटेरियल है,
0: जी
1: तो उसमें नॉर्मली केंचुए कम होते हैं। फिर भी कोई ओकेजनली हो तो उसको आप मैकेनिकल तरीके से जब छाननी करते हैं तो वो अलग कर दो।
0: जी डॉक्टर साहब, खेत में अगर डालना है तो उससे पहले उसने कुछ सुखाने सुखाने की भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत नमी तो उसमें बच जाए हालांकि।
1: नहीं इतना, जब वो जब खाद तैयार हो जाती है तो वो मैंने बताया जैसे पहले कि वो चाय पत्ती के जैसे सूखी चाय पत्ती हो जाती है
0: जी जी
1: पोरस
0: जी
1: भुरभुरी तौर पे,
0: जी
1: तो वो आप डायरेक्ट उसमें ऐसा सुखाने का ज़्यादा पानी होता नहीं है,
0: जी
1: नॉर्मल खाद की तरह खाद है वो, आप जो भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज हैं जिस क्रॉप के लिए है उसी
0: जी
1: हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी एक डॉक्टर साहब, वर्मी वास का भी एक वो सुना है।
1: वर्मी वाश भी कई तरीके से इसका प्रयोग होता है,
0: जी
1: इसको हम वो जब इस वर्मी वाश हम जब वर्मी कंपोस्ट बना के एक सिस्टम बना लेते हैं कि
0: जी
1: उसमें पानी ही निकलता है, तो पानी एंड में वो जो चारों लेयरों से निकल के जाता है नीचे, तो
0: जी
1: उसमें तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी हम उसका छिड़काव भी कर सकते हैं पत्तों पे भी, और उसके अलावा हम उसको ज़मीन में भी एक पर्टिकुलर अनुपात में डाल देते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वो है कि भी ये जो आजकल लेटेस्ट चला है कि भी ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, जैसे आपने पत्तों पे छिड़काव किया
0: जी
1: तो उस पे अगर कोई आपने दवाई छिड़की है तो उसका असर मल्टीपल हो जाता है।
0: जी
1: अब इसके अलावा कि ये तो असर करता ही करता है, जैसे आप कोई इस तरह की इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पत्तों पे अगर स्प्रे कर रहे हैं तो
0: जी
1: उसके असर को भी ये सिनर्जिस्टिक उसके साथ मिलके
0: बढ़ा
1: बढ़ाता है बढ़ाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें जब केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसको भी बिक्री कर सकते हैं।
1: हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई अगर, और ये नॉर्मली अपने आप ही किसान कर लेते हैं, किसान से दूसरे किसान, दूसरे किसान से तीसरे किसान,
0: जी
1: कि भी जैसे उनके पास बहुत सारी प्रोलिफिक ब्रीडर है, बहुत सारी इसकी ब्रीडिंग होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि भी एक में मेल फीमेल होता है
0: जी
1: तो बहुत सारी इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो
0: जी
1: ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी जनसंख्या बढ़ने से किसान को खुशी मिलती है
0: अच्छा, मतलब
1: या
0: इनकी संख्या बढ़
1: संख्या
0: जाती
1: बढ़ने
0: है।
1: से
0: जी जी
1: किसान खुशहाल होता है,
0: जी
1: तो वो नॉर्मली तो आसपास के किसान अपने हिसाब से रेट करके और
0: जी
1: उसका ले जाते हैं
0: जी
1: और कोई ऐसी इसमें समस्या आती नहीं है
0: जी
1: बिक्री में कोई बहुत, और बहुत बड़ी लागत तो है ही नहीं,
0: जी
1: 1,000 रुपये का 1,000 केंचुआ मिल जाता है, 1 रुपये का एक।
0: जी अब डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि बहुत से भाई गोबर गैस प्लांट की जो सलरी निकलती है उसको भी इस्तेमाल कर
1: हाँ
0: लेते
1: वो
0: हैं।
1: बहुत अच्छी तरह से, अब देखो ना आम के आम गुठलियों के दाम, अगर उसमें से आपने गैस निकाल के और अपना कुकिंग का या जो भी ईंधन का काम है वो कर लिया
0: जी
1: और नॉर्मली जो स्लरी बच जाती है वो वर्मी कंपोस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट है
0: जी
1: उसको केंचुए अच्छी तरह खाते हैं और वो उसका जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो
0: जी
1: हम एज सच यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब कोई भी प्रकृति का तत्व बेकार नहीं गया
0: जी
1: और जाता भी नहीं है अगर आप उसको यूटिलाइज करना सीख जाए तो।
0: जी तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि वर्मी कंपोस्ट बहुत प्रचलन में हो रही है, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, गोबर हो गया या खेत का बचा हुआ कोई भूसा है, कोई और पौधे का कोई हिस्सा है, वो सब चीज़ें इस्तेमाल करके और एक खाद के रूप में इसने तब्दील कर सके हैं, जो कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा
0: तो इस सब
1: आपने,
0: जानकारी के लिए डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद संजय भाई।
2: तो ये आपने सुनी पूर्व प्रसारित बातचीत और ई बयान भाई सुनवा दे हैं पक्के साज की रागनी, जिसके गायक कलाकार हैं राजेश कुमार।

भी आपने सुनी रागनी गायक कलाकार थे राजेश कुमार। और भाई इससे के साथ आज का कृषिगत कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत और ई बाइसनिंग कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आज शनिवार बारी रहेगी कार्यक्रम आपकी पसंद की। आपकी पसंद कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हरियाणवी फिल्म चंद्रों के इस गीत के साथ में, जिसके भी गायक कलाकार हैं त्रिलोकी वर्मा, दिलराज कौर, फरमाइश फेजी। आप सब ने गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, श्रीमती कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वाणिका गिल। अगली चिट्ठी भी केनरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, करण, गीतू, निहारिका वंश बत्ता। महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता गांधी, वंश, दिया, नोनू, सुगुन, विक्की गांधी। आप फरमाइश करता है गांव खेरका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लोट। मसीता डबवाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। गांव बाणा ब्रह्मणा नरवाणा से आप हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विजय, जितेंद्र, अजय और जोगिंदर। आप हैं गांव रामराय जिला जींद से श्री गंगा सिंह प्रधान, उषारानी विक्रम सिंह, परविंदर, विजेंदर, सीमा, पूजा, रिंकी, पूरा परिवार। गांव पांडवान जिला चरखी दादरी से आप हैं बुलबुल, दर्शन सिंह, मनिंदर। तो भी आप सब की फरमाइश पे हरियाणवी फिल्म से गाना, कलाकार हैं त्रिलोकी वर्मा, दिलराज कौर।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली रागनी भी गायक कलाकार हैं पाले राम दही और उनके साथी फरमाई साहब सबकी गांव फ्रांसी ते राजकुमार डूडी सरजीत सिंह डूडी प्रमोद कुमार डूडी गांव द्वारका से आप हैं शमशेर सिंह पूरा परिवार के साथ मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन सुनीता जैन आप हैं डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल सौरभ सिवानीवाल रमेश वर्मा गाँव लुवारी जाटू जिला भिवानी से रामफूल शर्मा हरिराम शर्मा हरिकृष्ण शर्मा मदन सिंह नौरंग दुकानदार सेरा टेलर हरिराम प्रजापत साथ में विनानी देवी और इससे रागनी की फरमाइश है भाई मसीता डबवाली से दर्शन लोट इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर हनी लोट गांव चौटाला से दारा पंडित संजय शर्मा दिवानसु जोशी बुलबुल जोशी पुनीत पंचारिया गांव जिंदर से मासे सतवीर शर्मा कौशल्या बाला पूरा परिवार कस्बा जुलाना से आप पंडित महावीर शास्त्री तो आप सबकी फरमाइश पे रागनी गायक कलाकार हैं पाले राम दैया और उनके साथी।

0: साथी प्रमेय साहब सबकी आफे गांव लाठ जिला सोनीपत से केशव नमन अनवी अनी कपूर सिंह कौशिक कृष्ण कुमार राजेंद्र केतुराम आदर्श गांव किलंगा से आफे मास्टर सुंदरपाल कौशिक संतरा देवी अभिनव निशांत दृष्टि तोसानी साथ में मानी गांव चुलाना रोहतक से आफे रामचंद्र रोहज रामफल सुरजा हेमचंद्र रोहज पूरा परिवार गांव सांगवान से आफे शमशेर गुजर पालाराम गुजर सुमन रानी रवि कुमार पवन बलजीत सरपंच बूप मास्टर और पूरा परिवार गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं मिक्का विरक बलविंदर विरक जयतेग विरक हरदेव विरक हनुमानगढ़ से आप हैं जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला गांव अजायब जिला रोहतक से ऋषभ देव नैन और भाई आप हैं जिला जींद का गांव दौरड़ श्रोता है श्री राम चहल वीर सिंह चहल कमल फौजी हरिचंद्र दयाचंद पंडित महासिंह जिले सिंह जांगड़ा रामपाल रामेर और साथी फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांडा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनमिंदर गोलू काकू जी एस रामगढ़िया गांव लुदेसर से पप्पू रामगाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी रुचिका आदर्श गांव बड़ियाड़ी हरियाणा से आप हैं दर्शनलाल बंसल सुदेश रानी प्रवीण कुमार बंसल ममता कमल और गर्विस बंसल तमन्ना बंसल तो वे आप सब की फरमाइश पे ये रागनी गायक कलाकार हैं फूल कुमार बेलरखा बलजीत सिंह पेट वाड़िया और उनके साथी
1: साते

तो ये थे कलाकार फूल कुमार बेलरखा, बलजीत सिंह पेटवारी और उनके साथी। और भी कार्यक्रम के आखिर में पक्के साज की रागनी दो गाना, गायक कलाकार हैं करतार सिंह तूर, कंचन शर्मा। और भी फरमाइश आप सबकी। चौधरीवाद से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, विवेका और प्रीति। और भी गांव बागौद, जिला महेंद्रगढ़ से प्रकाश अम्बावता, सुबेदार खेमचंद, जयदयाल, ओम प्रकाश, बलबीर सिंह, वेद सिंह, नंद किशोर ने। लाल मस्जिद भिवानी से सैम पोपली, दृश्य पोपली, समर पोपली। गांव कायला से आप हैं भाई पुनीत कुमार भोकल, प्रकाश चंद भोकल, संदीप भोकल। और बठिंडा रोड डबवाड़ी से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग। दुर्गा कॉलोनी आसी से राजू मिगलानी, बबीता, मन्नू, सुभाष, बब्बू और डब्बू। माधवानपाना जोजू कला से आप हैं विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, प्रिया, तनिषा, दीपक, अनिल, सोनू। जज्जर से भी बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मैंक भाटिया। जागसी से आप हैं रामस्वरूप शर्मा, ओमबीर, साथ में विरामबीर वत्स। लोकू कॉलोनी लुहारू से आप हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र और लक्ष्मी देवी। और भी गांव रिवाड़ा से आप हैं कृष्ण शर्मा, प्रकाश शर्मा, जय भगवान, संदीप, कुलदीप, अजय, विजय शर्मा, पूरा परिवार। गाँव बिचपड़ी जिला सोनीपत से हरिराम पुनिया, धर्मचंद पुनिया, हवा सिंह। श्यामड़ी से आप हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, शकुंतला शर्मा, इंद्र प्रकाश, डॉक्टर संदीप शर्मा, पूरा परिवार। गोवाणा से भाई सत्यवान मुंशी, करमवीर, नरेश, समुंदर, श्री भगवान, हरिओम शर्मा, रोहतास, सौरव, राकेश। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता जाजोरिया, गगनदीप। गाँव बड़ियाली से आप हैं मास्टर भीम सिंह जी। और विषय रागनी की फरमाइश भेजी गाँव सिवाड़ा से जापान शर्मा, दया शर्मा, ऋषि राम शर्मा ने। गांव कितलाना से आप हैं प्रहलाद शर्मा, पवन शर्मा। बड़ौदा से उधम मोर, राज सिंह, मोहित। अड़ेवा जींद से आप हैं नरेश लोहान, राजकुमार लोहान, जोगिंदर लोहान, रणदीप कश्यप, साथ में भाई गुलसी परिवार। नंदगढ़ जींद से आप हैं मोहनलाल दलाल, संजय दलाल, राजेश, रोहित। गुड्डा गोवाणा से मैनपाल नागर। सिवानका से आप हैं रामबीर बैरागी, हवा सिंह दलाल, दिलबाग नंबरदार। दरौली खेड़ा से दिलबाग शोकंद, हवा सिंह शोकंद, सत्यम, पूरा परिवार। ग्यासरी उर्फ गादी। उत्तर प्रदेश से आप हैं कांसीराम दलाल, बलदेव आर्य, रामपाल, दयानंद और धर्मवीर। तो भी आप सबकी फरमाइश पे ये दो गाना गायक कलाकार रहेंगे भाई करतार सिंह तूर, कंचन शर्मा।

तो ये थी कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति इस दो गाने के रूप में, गायक कलाकार थे भी करतार सिंह तूर, कंचन शर्मा, और विषय के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई ने इजाजत, सारे बण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आजा नचले के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं चित्रा और केके की आवाज़ में, फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ से। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत आपको सुनवाती हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म घर से। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

हिमेश रेशमिया की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से ये खूबसूरत गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म एजेंट विनोद से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 8:02 और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम रे से। आवाज़ें हैं मिथुन और अरिजीत सिंह की। इस गीत को लिखा है मिथुन ने और संगीत भी दिया है मिथुन ने।

सनम रे फिल्म से सुना भी आपने ये गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म अग्नि साक्षी से। शब्द रचना है समीर की, संगीत बत किया है नदीम श्रवण ने।

0: उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे ये गीत। शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत दिया अन्नू मलिक ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया संदेश शिंडलिया ने।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज कुमार की आवाज़ में।

0: इजाजत नमस्कार। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के

0: अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi

कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दुनिया दिलवालों की से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनेंगे हरिहरन के और असलम मुस्तफ़ा की आवाज़ में फिल्म दुनिया दिलवालों की से। शब्द रचना है पी के मिश्रा की और संगीत दिया है ए आर रहमान।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे। कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, एल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सब के

0: से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व एडीजी मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए, समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है।

0: एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
3: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असंरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुँच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र

0: में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
1: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रविधों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
2: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
3: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई हरास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
0: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, बट थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
2: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
0: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
5: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
2: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
6: मैं दीपक प्रकाश मंत्री पंचायती राज विभाग आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने

0: जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
3: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमरीका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन द वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापू ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया।

0: मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।